0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी। बाद में अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है। श्री बिरला ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी सदस्य जानबूझकर प्रश्नकाल में बाधा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए, आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहे हैं और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी।

0: महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
1: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Both the Houses of Parliament have been adjourned till 12 noon following opposition uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue. Lok Sabha Speaker Om Birla alleged that some opposition members are deliberately disrupting the question hour, which is not appropriate. He added that obstructing the proceedings of the House in a planned manner is not in accordance with parliamentary traditions. The Rajya Sabha was also adjourned till 12 noon over the same issue. When the House assembled at 11 a.m., several union ministers laid the paper on the table of the House. Meanwhile, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju today alleged that Congress members did not speak on the provisions of the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 during the debate and raised unrelated political issues.
3: Rahul Gandhi is using all kind of undemocratic languages, which is not in the setting for correct discourse in parliamentary democracy. One must use civilized and soft language. We may differ with each other, but the way Rahulji is using this demeaning kind of languages, which is not good for democracy, which is not for our country.
2: The proceedings of the Lok Sabha has resumed now and Rajya Sabha is adjourned till 2 p.m. Prime Minister Narendra Modi chaired the second high-level meeting with secretaries to the government at his residence. During the meeting, the Prime Minister reviewed the future action agenda of ministries and departments dealing with finance and economy, commerce and industry and technology sectors. The meeting focused on accelerating progress towards the goals of Viksit Bharat. During the meeting, Mr. Modi called for a strong focus on team building across ministries and departments, urging officers to work with a shared sense of purpose. He emphasized the need to break both horizontal and vertical silos within the government so that departments function in close coordination and deliver integrated outcomes. India's total exports reached a record 860.

landed. कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ रेनू। तो कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर यानी 100.1 MHz पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंटरेस्ट चैनल पर भी यानी 366.3 मीटर अर्थात 819 KHz पर। तो शुरू करते हैं अपनी बातों मुलाकातों का सिलसिला। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिलके रहेंगे,

सुना और प्रीत बराई, इस सुन से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और आज है आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के रूप में। तो सबसे पहले आप सबको इस पावन दिन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जीवन को दिशा देने वाला आज का ये दिन वेदों के संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और बौद्ध धर्म के अनुसार आज ही के दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। और योग परंपरा के अनुसार इसी दिन शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान देकर अपने गुरु का पद संभाला था। ये दिन ये त्योहार उन गुरुओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी है।

जिन्होंने हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान के प्रकाश से भर दिया। हमारी संस्कृति और परंपरा में जीवन में ज्ञान, अनुशासन और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसीलिए तो हमारे प्राचीन ग्रंथ स्कंद पुराण की गुरु गीता में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै गुरु गुरुवे नमः।

हमारे गुरु भी हमारे माता पिता के समान होते हैं और हमारे माता पिता भी गुरु तुल्य होते हैं, आदरणीय होते हैं, क्योंकि जीवन की शुरुआत हम इन्हीं के साथ, इन्हीं के सानिध्य में करते हैं। तो सही गलत का फैसला हमारा करना यही हमें सिखाते हैं। तो ये गीत आपने सुना, फिल्म थी मैं चुप रहूंगी और लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इसी के साथ जो हम अपने कार्यक्रम में दिन विशेष की बात करते हैं, तो दिन विशेष में आज बता दें कि आज है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, जो माँ दुर्गा का वाहन है और शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक भी है और है हमारा राष्ट्रीय पशु। आज के दिन को मनाने का उद्देश्य बाघ संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और बाघों के प्राकृतिक आवास का प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि बाघों का और हमारा साथ लंबे समय तक यूं ही बना रहे, जिससे हमारी भावी पीढ़ियां जंगल की इस शानदार प्रजाति को देख सकें। और जब बात ये दिन विशेष की हो ही रही है, तो आजकल भाई सबसे ज़रूरी बात जो राष्ट्रमंडल खेलों की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आजकल स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, और इसमें अब बड़ी खुशी की बात है कि बहुत शानदार प्रदर्शन हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं। तो बारिश के मौसम में पदकों की बारिश भी लगातार जारी है और कुल पदकों की संख्या अब हमारी 12 हो गई है, जिसमें 2 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 3 कांस्य पदक हैं। 40 वर्ष की शर्मिला धनखड़ जो हैं, 2 बेटियों की माँ भी हैं, उन्होंने ये सफलता विपरीत पारिवारिक और आर्थिक परिस्थितियों के बाद अर्जित की है और इन्होंने गोल्ड मेडल, दरअसल

अर्जित किया है और ये पैरा एथलेटिक्स इवेंट के सीजन का सर्वश्रेष्ठ होकर के ये मेडल इन्होंने जीता है। और इसी तरह से ज्ञानेश्वरी यादव हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलाया है, और बिंदिया रानी देवी हैं, शिल्पा शायला भी हैं जिन्होंने अपने इवेंट में दमदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके साथ ही आज एक हरजिंदर कौर जो हैं वो एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई हैं, वेट लिफ्टिंग में रजत पदक इन्होंने जीता है। तो हमारे कार्यक्रम की ओर से हम इन सभी एथलीट्स को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और इसी तरह खेलते रहिए और देश का मान बढ़ाते रहिए। और अब समय है, जैसा कि आप लोगों को इंतजार होगा, अब समय है आज का सवाल पूछने का। तो आपको बताना है कि हिंदी अंग्रेजी के अलावा आप अपने घर में किस भाषा

अपना देश फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज में। और दुनिया में कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जिन्हें दुनिया उनके जाने के बाद भी याद करती है, सम्मान देती है, उनके कार्यों से प्रेरित होती है। ऐसे ही दो महान विभूतियों को आज हम याद कर रहे हैं जिन्हें भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनमें से एक है अरुणा आसफ अली, निर्भीक निडर स्वतंत्रता सेनानी और भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, जिन्हें ओल्ड ग्रैंड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान पर तिरंगा फहराने जैसे साहसपूर्ण कार्य के लिए उन्हें हमेशा याद करता किया जाता रहेगा। और इसी तरह से जब देश की प्रगति और उन्नति की बात होगी तो उसमें JRD टाटा की अग्रणी भूमिका की बात भी जरूर होगी। जमशेद रतनजी दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा की आज जन्म जयंती है। वे देश के पहले लाइसेंसी पायलट थे और साथ ही देश की पहली कमर्शियल एयरलाइंस की नींव रखने वाले भी। वे पहले उद्योगपति थे, इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, वायुयान, अन्य उद्योगों के माध्यम से उन्होंने देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा उच्च नैतिक मानकों का पालन किया जिसमें ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता भी थी। तो आज हम सब अपने कार्यक्रम के माध्यम से इन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं और उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो इसी के साथ मैं अपना सवाल फिर से आप लोगों को दोहरा देती हूँ कि आज का हमारा सवाल ये है कि आपको बताना है कि आप अपने घर में हिंदी अंग्रेजी के अलावा कौन सी और भाषा में बात करते हैं। गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, कुछ भी, जो भी आप अपने घर में अपने लोगों से बात करने में बोलते हैं उस भाषा के बारे में हमें बता दीजिए। तो हमारा मेल आईडी तो आपको पता ही है, fmgoldga@gmail.com। तो हमें है इंतजार आपके जवाबों का।

वंदना फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और देखिए, जो सवाल हमने आपसे पूछा था, आपके मेल्स भी आने शुरू हो गए हैं, तो हम तक ये जो मेल एक पहुंचा है, गौरी शंकर नागलोई जी हैं, ये लिखते हैं कि राम राम। तो राम राम गौरी शंकर जी आपको भी। और ये कह रहे हैं कि 50 मील के बाद भाषा जो है वो बदल जाती है, थोड़ा बहुत जो शुद्ध हिंदी घर में नहीं कोई बोलता, वो जो है वो भाषा इतनी बदल जाती है कि आधी हिंदी आधी देसी भाषा हो जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ना, वो कहते हैं ना, हमारी देश में कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये लोकोक्ति जो है बिल्कुल चरितार्थ है कि थोड़े थोड़े दूर पे भाषा जो है हमारी बदल जाती है, बोलियाँ बदल जाती हैं। और लेकिन यही तो खूबसूरती है, हमारे देश की विविधता है इसी में। और इसके अलावा हमारे पास एक और मैसेज आया है, ये है महेश अग्रवाल जी हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो है घर में तो अपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, लेकिन हम लोग जो है अपने घर में अपनी ही भाषा में बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अपने लोगों से जब अपने में और हरियाणवी में बात करते हैं तो ठीक है। महेश अग्रवाल जी, बहादुरगढ़ से आप लिख रहे हैं, हरियाणा से, तो बिल्कुल हरियाणवी आपकी मातृभाषा है और आप अपने लोगों से अपने घर में हरियाणवी में बात करते हैं, तो ये बहुत ही अपनापन आपको महसूस होता होगा। सभी को महसूस होता है जब लोग अपने घर में अपने लोगों से जब तक अपनी भाषा में बात ना कर लें तो वो अपनत्व नहीं आता है। बिल्कुल सही बात है। और भाषा तो हमारी जो है वो कहा जाए कि शुरुआत में जिस भाषा में हम सीखते हैं, बच्चा सीखता है, वो उससे उसकी कल्पनाएं और उसकी आत्मविश्वास इसीलिए बढ़ता है क्योंकि उस भाषा को वो अच्छी तरह जान जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जैसे कहा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोसूल। तो वही कोसूल भी उसी से मिटता है, मतलब यानी हमें सुकून भी देता है और इसी यहीं पर हमारी उन्नति का मार्ग भी है। और इसी तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बात करना चाहूँगी खुर्जा की। तो खुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा शहर में प्राचीन और सुंदर सिरेमिक यानी चिकनी मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में इसे इसीलिए जाना जाता है, इसीलिए इसे सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। यहाँ बनते हैं मिट्टी के कलश, त्योहारों के दिए, रोजमर्रा के खाने पीने के बर्तन,

सजावटी वस्तुएं, फूलदान, जार, सो पीस और देवी देवताओं की मूर्तियां और भी कई सारे ढेरों सामान यहाँ पे बनते हैं जो किसी भी घर की शोभा को बढ़ा सकते हैं। और खुर्जा की ये कला लगभग 600 साल पुरानी है। दिल्ली के पास बसे प्रवासी कुम्हारों ने फारसी और मध्य एशियाई तकनीक को भारतीय डिजाइन के साथ मिलाकर इस कला को विकसित किया था। इन चीजों में हाथ से की गई जो नकाशी होती है, फूल पत्तियां और लताएं इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखते ही बनती हैं। और परंपरागत रूप से ये हल्के सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर नीले या भूरे रंग से बनाए जाते हैं। इनमें उपयोग होने वाला रंग ग्लेज लेट्री फूड ग्रेड होते हैं जिससे कि माइक्रोवेव और सेहत के लिए सुरक्षित होते हैं। ये बर्तन चमकदार होने के साथ साथ काफी मजबूत भी होते हैं क्योंकि ये बर्तन हाथ से तैयार किए जाते हैं। तो भाई अगर ये उम्मीद करें आप कि एक जैसे दो बर्तन मिल जाएंगे तो ये नहीं होता, एक जैसे दो बर्तन नहीं मिलते। और अगर आप इन चीज़ों के शौकीन हैं तो एक बार दिल्ली से मात्र 85 किलोमीटर दूर इस छोटे से शहर में एक बार ज़रूर जाइए। और सिरेमिक पॉटरी के साथ साथ मैं बता दूँ कि यहाँ पर मिलती है 115 साल पुरानी मशहूर मिठाई खुरचन, तो इसे भी लेना ज़रूर, मतलब ज़रूर लेना चाहिए आपको। और ये मिठाई ना दूध को धीमी आंच में उबालकर मलाई की परतें जमाकर बनाई जाती है, तो इस मिठाई का स्वाद भी वहां पर जाकर के आप जरूर लीजिएगा।

आई मिलन की बेला, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर और रफी की। और इसी के साथ देखिए आपके मेल्स हमारे पास आते जा रहे हैं, और ये मेल है हमारे पास जो

सुदर्शन मुखी का, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये लिख रहे हैं शांति नगर सोनीपत से। तो आप लिख रहे हैं कि मैं अपने घर में हिंदी अंग्रेजी के अलावा पंजाबी और हरियाणवी में बात हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल ठीक है सुदर्शन जी, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पंजाबी में, यानी ये अभी आपकी मातृभाषा होगी और इसे आप अच्छी तरह जानते होंगे, इसमें बात करते हैं। तो देखिए, पंजाबी से याद आया मुझे, तो पंजाबी में बहुत मशहूर लेखिका थी अमृता प्रीतम जी, उनकी कितनी अच्छी अच्छी रचनाएँ हैं, कृष्णा सोपती जी हैं वो लिखती थी। तो उनकी एक कविता की एक लाइन मुझे याद है, मैं तेनू फिर मिलांगी कब किथे पता नहीं। तो बहुत अच्छी मीठी लैंग्वेज है ये भी। और उसके बाद आप लिख रहे हैं, ये हैं अग्रसेन यादव जी। तो अग्रसेन यादव जी भी लिख रहे हैं कि इन्हें भी अपने घर में, और हम लोग आपस में सब अवधी में बात करते हैं, भोजपुरी में बात करते हैं। और देखिए, अवधी और भोजपुरी का नाम आपने लिया, तो देखिए ना, भाषा हमें अपने क्षेत्र का की पहचान अपने आप हमसे करा देती है, क्योंकि अवधी और भोजपुरी आपने बताया तो अपने आप जो है इंसान सोच लेता है कि आप अवध क्षेत्र से संबंध रखते होंगे। जैसे कि अवधी बोली जाती है लखनऊ में, अयोध्या में, और भोजपुरी का भी वो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश है वही उसका क्षेत्र है, तो आप जरूर वहाँ से संबंध रखते हैं। और भाषा ना अपने साथ संस्कृति को समेटती है, क्षेत्र को समेटती है, तो भाषा को जिंदा रखना यही बहुत ज़रूरी है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो तभी आगे पहुँच पाएगी जबकि अपने घर में हम उसे अपने लोगों में बोलते रहेंगे, और इससे हमारे बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे, और इस तरह से भाषा जो है वो अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। और इसी के साथ ही अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उड़ान यात्री कैफे की, यानी कि उड़ान यात्री कैफे, जो कि आप सुन रहे होंगे कि क्या है ये, तो ये है कैफे जो एयरपोर्ट पर मिलते हैं, मिलने वाले महंगे खाने पीने के सामान से आम आदमियों को राहत दिलाने के लिए, हवाई यात्रा को बजट अनुकूल बनाने के उद्देश्य से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा की गई एक ऐसी सरकारी पहल है जो कि भारतीय हवाई अड्डों पर आम यात्रियों को बेहद कम और किफायती दर से ये साफ सुथरा और भोजन पे जो है वो पेय पदार्थ उपलब्ध कराती है। यहाँ खाने पीने की चीजों को फिक्स और कम दाम इसके रखे गए हैं, जैसे कि 10 रुपए की चाय, 10 रुपए की पानी की बोतल, 10 रुपए की कॉफी, 20 रुपए का समोसा, तो ये सब चीजें यहाँ पे मिलती हैं। कम दाम होते तो है इसके, लेकिन इसके बावजूद यहाँ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। फिलहाल ये सुविधा कोलकाता, चेन्नई, पुणे, भुवनेश्वर, लखनऊ और अहमदाबाद जैसी चुनिंदा हवाई अड्डों के टर्मिनल क्षेत्रों में ही उपलब्ध कराई गई है। तो ये सुविधा कम बजट में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए तो भाई बहुत लाभप्रद है ही। तो अगली बार जब आप हवाई यात्रा पर जाएं तो उड़ान यात्री कैफे की इस सुविधा का उपयोग जरूर करें, क्योंकि ये सुविधा है आप ही के लिए।

भी कदम के निशान बना के चले। और ये गीत अभी आपने सुना जेल ठीक से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। और इसी के साथ आपके मेल आते जा रहे हैं हमारे पास, और अभी जो मेल हमें प्राप्त हुआ है वह है कमाईनी जी का, मोती लक्ष्मी नगर से। तो ये लिख रही हैं कि इनका गांव उत्तर प्रदेश में है, वैसे जब वहां जाते हैं तो वहां अवधी भाषा में बात करते हैं, और जब वहां से लोग आते हैं तो उनसे भी अवधी में बात करते हैं। अपनी मातृभूमि में बात करना एक अलग सी खुशी देता है। बिल्कुल सही कहा आपने कमाईनी जी, बहुत ही खुशी होती है। और जब लोग एकदम से कहीं आप किसी ऐसी जगह जाएं जहां पे उस क्षेत्र में कोई आपको जानने वाला ना हो, लेकिन एकदम से जब अपनी भाषा वहां सुनाई देती है ना, तो कुछ अपनेपन का एहसास अब बाहर हो जाता है। तो घर में आप बात करती हैं, बहुत अच्छी बात है। यही हमारी चीज़ें जो है वो अगली पीढ़ी तक कन्वे होंगी और वो सीखेंगे भाषा को। और इसके साथ ही इदरीस सैफी जी कह रहे हैं कि खुर्जा रास्ते में पड़ता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा है कि किस भाषा में ये बात करते हैं। भाई इदरीस जी, आपने लिखा खुर्जा रास्ते में पड़ता, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप खुर्जा जाते रहते हैं और बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें आप वहाँ से लाए होंगे, लेकिन अपने कौन सी भाषा में बात करते हैं ये भी लिख दीजिए। और इसके साथ ही नवीन भाटिया मोती नगर से लिख रहे हैं कि ये घर में सिंधी बोलते हैं। तो भाई बहुत ही खूबसूरत भाषा है ये सिंधी, और आप बोलते हैं ये बहुत अच्छी बात है, बोलना चाहिए अपने घर में लोगों से, इसी में बात करनी चाहिए। और इसी के साथ कार्यक्रम में अगली बात मैं करना चाहूँगी कि स्वास्थ्य की बात, क्योंकि बरसात का मौसम देखिए चल रहा है और आजकल बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा बना रहता है। तो डेंगू संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से होने वाला वायरल बुखार है, जिसमें कि तेज बुखार, हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों में असहनीय दर्द, आंखों में दर्द, शरीर या चेहरे पर लाल रंग के दाने या चकत्ते उभरना, थकान और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। गंभीर स्थिति में पेट में तेज दर्द, लगातार उल्टियां आना, नाक या मसूड़ों से खून बहना और प्लेटलेट्स का तेजी से गिरना जैसी गंभीर समस्याएं होती हैं। तो अगर इस तरह का कोई लक्षण आप में भी या आपके परिजनों में दिखाई देता है तो इसे साधारण बुखार नहीं समझना चाहिए, बल्कि बिना देर किए आप डॉक्टर से संपर्क करें। और ये बिल्कुल ना करें कि थोड़ी राहत पाने के लिए आप कोई दर्द निवारक दवा लें और एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करें, क्योंकि इसका असर तो इस डेंगू के बुखार में होता नहीं है। और डेंगू से बचा जा सके इसके लिए भी सावधानियां रखनी बहुत जरूरी हैं। और ये सावधानियां हैं जैसे कि आप पानी कहीं जमा ना होने दीजिए, क्योंकि देखिए ना, याद रखिए कि डेंगू का मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपता है। कूलर, गमले, बाल्टी या छत पर पुराने टायर आदि में पानी इकट्ठा ना होने दें। जितना संभव हो शरीर को ढक कर रखें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करें। घर के

ये गीत तभी आपने सुना झुक गया आसमान से लता मंगेशकर की आवाज में। और इसी के साथ ही अब हमारे कार्यक्रम जो है समाप्ति की ओर है, तो भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने श्रोताओं से क्योंकि मैं इसके इससे ज्यादा मेल नहीं ले पा रही हूँ, तो फिर कभी आपका मेल जरूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ मुझे यानी रेणु को दीजिए अनुमति, नमस्कार।

Langan. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का होता है और सरकार से जवाब मांगना सदस्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल

एक ही फिल्म से कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीना चौहान का प्यार भरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, जहां हम आपको सुनाते हैं फिल्मों से जुड़ी अनसुनी कहानियां और आपके पसंदीदा गाने। आज हम बात करेंगे 1964 में आई सुपरहिट फिल्म की, जो दोस्ती, मोहब्बत और भावनाओं की कहानी है। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं फिल्म आई मिलन की बेला की। इस फिल्म का निर्देशन मोहन कुमार ने किया था, जबकि पटकथा सचिन भौमिक ने लिखी थी। फिल्म के निर्माता थे जे ओम प्रकाश, जिनकी शानदार प्रस्तुति ने इसे एक यादगार फिल्म बना दिया। और भी बहुत सी बातें करेंगे फिल्म के बारे में, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: का देखिए क्या क्या दिखाएगी अभी दिल की लगन आहा आई मिलन की बेला देखो आई बनके फूल हर कली मुस्कुराई हाय हाय हाय
1: आहा आई मिलन की बेला देखो आई बनके फूल

दोस्तों डायरेक्टर मोहन कुमार की इस फिल्म में मुख्य भूमिका में धर्मेंद्र के साथ राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, शशिकला जैसे सितारे नजर आए और साथी कलाकारों में थे गजानन जागीरदार, सुलोचना लटकर और नजीर हुसैन। धर्मेंद्र ने अपने करियर में रोमांटिक और एक्शन हीरो के तौर पर खूब नाम कमाया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में आई मिलन की बेला में पहली और आखिरी बार विलेन का किरदार निभाया था। और मजे की बात तो ये है कि इस फिल्म के बाद वो हीरो के तौर पर इतने मशहूर हो गए कि फिर कभी नेगेटिव रोल नहीं किया। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र के पास फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। वहीं राजेंद्र कुमार और सायरा बानो की केमिस्ट्री भी दर्शकों को खूब पसंद आई थी।

दोस्तों, अगर बात करें फिल्म की कहानी की, तो एक अमीर व्यक्ति की दुनिया उस वक्त बिखर जाती है इस फिल्म में, जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। अपनी पत्नी को इस सदमे से बचाने के लिए वो नर्स की सलाह पर अपनी नौकरानी लक्ष्मी यानी सुलोचना लाटकर के जुड़वा बेटों में से एक को गोद ले लेता है। आगे क्या होता है बताएंगे आपको इस गाने के बाद।

0: दोस्तों, समय बीतता है और जुड़वा भाई अलग अलग परिवेश में बड़े होते हैं। श्याम यानी राजेंद्र कुमार अपनी गरीब माँ के साथ गांव में बड़ा होता है और किसान बनता है, जबकि रंजीत यानी धर्मेंद्र अमीर माता पिता की देखरेख में शहर में पला बड़ा होता है। श्याम गांव के किसानों की भलाई के लिए श्री चौधरी यानी नजीर हुसैन के सहकारी आंदोलन से जुड़ जाता है, जहां उसकी मुलाकात श्री चौधरी की बेटी वर्खा यानी सायरा बानो से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इस बीच रंजीत यानी धर्मेंद्र विदेश से लौटकर उसी गांव में अपनी मां के साथ रहने आता है। कुछ ही समय में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब कुछ शेयर करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बीच कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस्मत उनके सामने एक बड़ी परीक्षा रखने वाली है। रंजीत को भी बरखा से प्यार हो जाता है और जब उसे पता चलता है कि बरखा भी श्याम से प्यार करती है, तो बरखा के प्यार को खोने का अपमान और उसे पाने का जुनून, और बस यहीं से शुरू होता है रंजीत की भूमिका का ग्रेट शेड्स और जल्द ही गलतफहमियों और षड्यंत्रों का दौर शुरू होता है। श्याम पर चोरी और एक अन्य झूठा आरोप लगाया जाता है। परिस्थितियां बिगड़ती है, लेकिन अंत में सच्चाई सामने आती है। रंजीत को अपनी असली पहचान का पता चलता है और दोनों भाई फिर से मिल जाते हैं। फिल्म दोस्ती, प्रेम, त्याग और सच्चाई की जीत की एक भावनात्मक कहानी है।
1: रुक जा, असली नोट से क्यों खेल रहा है?
2: ब्रो, ये फटा है। सुन, फटे फटे या पुराने नोट को
3: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
2: वाओ, नया नोट मिलेगा?
4: हाँ,
2: जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।

सनम दोस्तों, इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। फिल्म में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। दोस्तों, अपने शानदार संगीत, दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय के कारण ये फिल्म आज भी क्लासिक मानी जाती है। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और इसे आज भी याद किया जाता है।

0: सर को कदमों में झुकाया।
1: दोस्तों एक ही फिल्म के कार्यक्रम में हमारी आज की फिल्म थी आई मिलन की बिना। बहुत से दोस्तों ने हमें मेल किया है, तो चलिए आइए देखते हैं किन किन दोस्तों ने हमें मेल किया है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत गिल, राजदीप गिल, गुरनूर गिल, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना और हर्षित। अगला मैसेज आया है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर का। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर और विशाल नहावकर। भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल शिपा और पूजा परिहार।

किया है जी हमें भागवत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया ने। अब सुन लेते हैं एक गीत और उसके बाद फिर पढ़ेंगे आपके मेल।

दोस्तों अगला मेल आया है संदीप मकर, ज्योति मकर, मन्नत मकर, भारत मकर, कमल सहानी का। इन्होंने हमें मैसेज किया है पिंगा वाला चौक गोरैया जलंधर पंजाब से, और अगला जो मैसेज आया है मैसेज गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा और पूनम गगनेजा, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम अभी आपने सुना, हमारी आज की फिल्म थी आई मिलन की लीला। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी है। सरकार ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो इस मामले पर लोकसभा में बहस से कतरा रही है। सरकार का कहना है कि बिल का मकसद इम्तिहानात के निजाम में तलबा के एतमाद को मुस्तहकम करना है। वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया है और मरकज की तरफ से इस मुश्किल घड़ी में आसाम को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। और आज दुनिया भर में शेरों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। शेरों के तहफ्फुज की कोशिशों में भारत सबसे आगे है और दुनिया के कुल शेरों की तादाद में से लगभग 70% भारत में पाए जाते हैं। अब खबरें तफसील से। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पर गौर खोज और मंजूरी के लिए बहस जारी है। इस बिल का मकसद पब्लिक इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी एक्ट 2024 में तरमीम करना है। इस कानून में कई अहम इल्तिजामात हैं जिनमें मुजरिमों को 10 साल तक कैद की सजा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और सजा याफ्ता अफराद की जायदाद जब्त करने जैसी सख्त सजाएं शामिल हैं। इस कानून के तहत सभी रियासती हुकूमत और मरकज के जेर इंतजाम इलाके की इंतजामिया खसूसी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगी ताकि मुकदमात की रोजाना समाप्त हो सके। इसमें मुकदमात की तहकीकात 2 माह के अंदर अंदर मुकम्मल करने और 3 महीने के अंदर मुकदमात का फैसला कर देने की तजवीज़ है। अमला, अवामी शिकायात और पेंशन के वजीर मामलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लोकसभा में ये बिल पेश किया था। बहस में हिस्सा लेते हुए जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट दिलेश्वर कामत ने बिल पेश किए जाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि यह कानून तलबा के लिए बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के साथ साथ तालीमी निजाम में शफाफियत को भी फरोग देगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आज इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के अरकान ने पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 की दफात पर बहस के दौरान कोई बात नहीं की बल्कि गैर मुतालिका सियासी मसाइल उठाए। उन्होंने कहा कि ये तरमीमी बिल तलबा के खदशात और मुतालबात के जवाब में पेश किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस बिल को लाने के वजीर आजम के फैसले ने इम्तिहान के निजाम पर तलबा के एतमाद को मजीद मुस्तहकम किया है।
1: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले, वो इधर उधर का बात करके और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: लोकसभा ने उस मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत में तौसी कर दी है जो एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक कानून साजी पर गौर कर रही है। इस कमेटी की मुद्दत पार्लियामेंट के 2026 के मौसम सरमा के इजलास के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक बढ़ाई गई है। कमेटी के चेयरमैन बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने आईन में 129वें तरमीमी बिल 2024 और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों से मुतालिक तरमीमी बिल 2024 के साथ मुश्तरका कमेटी की मुद्दत बढ़ाने की तहरीक पेश की। इस तहरीक को ऐवान ने जबानी वोट से मंजूर कर लिया। बीजेपी के बहुत से अरकान पार्लियामेंट ने, जिनमें झारखंड के अराकीन भी शामिल थे, पार्लियामेंट के अहाते में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपी

एससी का पेपर मुबैना तौर पर लीक होने पर एहतियात किया। उन्होंने सीबीआई से इसकी तफ्तीश कराने और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी के रहनुमा संजय सेठ ने भी इस मामले की सीबीआई से तहकीकात कराने का मुतालबा किया। जनाब सेठ ने इस बात पर जोर दिया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के नौजवानों से किए गए अपने तमाम वादे पूरे कर दिए हैं और यकीनन उन्हें इनसे फायदा पहुंचेगा। आज राज्यसभा की कार्यवाही दिन में 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी क्योंकि अपोजिशन ने नीट मामले पर तलबा पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई की वजह से ऐवान में शोरगुल किया। जब पहले इल्तवा के बाद दिन में 12 बजे ऐवान की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने सवालों का वक्फा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन मेंबरों ने अपनी मांगों पर जोर देने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर चेयरमैन ने कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आसाम के वजीर आला डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा से बात की और इमदादी कोशिशों का जायजा लिया। वहां बालाई आसाम में जबरदस्त सैलाब आया हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर सरमा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनाब शाह ने सैलाब की सूरतहाल के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की और भारत सरकार की तरफ से मुतासरा इलाकों में तामीर नौ, बहाली और तमाम जरूरी इमदाद जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। इसी दौरान शिवसागर, गोलाघाट, चराईदियो और जोरहाट के सैलाब से बुरी तरह मुतासरा जिलों में इमदादी और बाजाबादकारी के काम जंगी पैमाने पर जारी हैं। आसाम सरकार ने हालिया सैलाब से मुतासर अफराद के लिए बहुत से इमदादी और बचाव इकदामात का ऐलान किया है। इन इकदामात में मरने वाले अफराद के लवाहिकीन को फौरी माली इमदाद देना भी शामिल है। इसके अलावा मुतासर कुम्मों को भी माली मदद और तलबा को तालीमी मदद दी जाएगी। भारत ने आबनाए हुरमुज में मुतअद्दिद बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा है कि खित्ते में तजारती जहाजरानी और सिविल बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अक्वाम मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि खित्ते में जारी तनाजे में मुख्तसर वक्फे के बाद हमलों का दोबारा आगाज और कशीदगी में इजाफा तशवीश का बाइस है। उन्होंने GFS गैलेक्सी, MT अलबाहिया और MT मुम्बासा समेत कई बहरी जहाजों पर इस माह आबनाए हुरमुज से गुजरने के दौरान होने वाले हमलों की सख्त मजम्मत की। उन्होंने जोर देकर कहा कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों में बहरी जहाजों की बिला रुकावट और आजादाना आमदोरफ्त को बहाल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दिन के दौरान पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के दौरान कम से कम 40 अफराद हलाक और बहुत से दूसरे जख्मी हो गए। खित्ते में फैली बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बहिमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। यूनाइटेड कश्मीर अवामी नेशनल पार्टी UK PNP ने गहरी तशवीश का जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज्यादा अफराद को हलाक किया जा चुका है। अभी खबर मिली है कि लोकसभा की कार्रवाई 2:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। आज दुनिया भर में शेरों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद शेरों और उनके फितरी मस्कन का तहफ्फुज़ करना और इनकी तादाद में कमी पर तवज्जो मरकूज करना है। इस मौके पर वजीर आजम ने अपने मुबारकबाद के पैगाम में कहा है कि दुनिया में जितने शेर पाए जाते हैं उनमें से 70% भारत में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शेरों को बचाने की भारत की कोशिशों को कुदरती माहौल में हमाहंगी के साथ रहने की सदियों पुरानी रवायात से फैजान हासिल हुआ है और आवाम की इज्तिमाई कोशिशों से इन्हें और ज्यादा तकवियत मिली है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि शेरों का तहफ्फुज़ सिर्फ एक जानवर की हिफाजत तक महदूद नहीं बल्कि पूरे माहौलियाती निज़ाम के तहफ्फुज़ और फितरत के साथ भारत के हमदर्दाना रिश्तों की अक्कासी करता है। जनाब यादव ने यह बात नई दिल्ली में शेरों के आलमी दिन 2026 के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कही। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन NHRC ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर को नोएडा की एक रिहायशी सोसाइटी के सीवरेज ट्रीट प्लांट के अंदर जहरीली गैस सांस में जाने से 2 अफराद की हलाकत पर नोटिस जारी किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। लोकसभा में पब्लिक इम्तिहानात में नामुनासिब तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर बहस जारी।

0: Kotra reviews flood relief efforts in Assam, says centre to provide all help to Assam during difficult time. India strongly condemns recent attacks on several maritime vessels in Strait of Hormuz, says commerce through international waterways must be restored. Death toll reaches 40 in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following brutal crackdown by Pakistani forces. And International Tiger Day 2026 being observed today. India leads the world in tiger conservation efforts with nearly 70% global tiger population. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार, लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुरमूज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
2: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बताने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
1: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि

0: कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
1: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्ट किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्ट किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खाली परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
2: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
3: प्रश्न है कि सिर्फ पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
4: असम में शिवसागर, घोलाघाट, सोरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
5: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000

लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंद्र सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखवापदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: चिंता का विषय है।
1: वेस्ट एशिया इज अ रीजन ऑफ
2: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
1: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
0: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि ये घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
3: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: द दर्शक पहुंचे आकाशवाणी दिल्ली का नेशनल न्यूज सर्विस 24x7 प्रोग्राम।

0: बदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
2: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा है हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी श्रोता, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
2: जी,
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए, जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
2: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओ, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
2: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
2: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
2: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
2: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है, यदि हमें निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
2: और अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
2: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405।

0: 9595 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज तो फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह, क्या शानदार मैच था। मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
3: जॉन, मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था। काश मैं भी देख पाती।
2: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं। जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
3: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे। फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
2: मेरे मन में एक बात आ रही है।
3: वो क्या?
2: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
3: वाह, क्या बात कही है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
2: हाँ, मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है जब जॉन लगभग 11 साल के थे।

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो

सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

0: 1923 में वो लिंटन क्रिसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।
1: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
2: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
1: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
2: क्या?
1: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा। हाँ, और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
2: जॉन
1: हाँ,
2: मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
1: अच्छा
2: ये देखो।
1: हेलो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
2: छोटे छोटे छेद?
1: हाँ।
2: उनसे क्या होगा?
1: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
2: अच्छा।
1: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
2: वाह।
1: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
2: चलो करके देखते हैं।
1: इसको इसमें छेद तो
2: हाँ
1: कर दिए।
2: हाँ।
1: अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
2: ये प्रोजेक्शन लैंप पे यहाँ रख देता हूँ।
1: हाँ। ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। अरे बात तो बनती नजर आ रही है।
2: हाँ? देखो सामने दीवार पर देखो। अरे जॉन, लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
1: हाँ, और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ, शाबाश शाबाश, ऐसे ही। हाँ, लगता है हमें कामयाबी भी मिल रही है। हाँ, हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
2: हाँ, हमारी मेहनत रंग लाएगी।
1: हाँ।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: يتندن وسي مهنة كرهو لكن قام يا بيني ملتي هسلت تاك يا بيب منزل باطور اسكو مهنه يجارك اسكو طبطبا يا यहां तक तो ठीक है, अब देखता हूं कि क्या होता है।
1: विलियम?
2: हाँ जॉन।
1: प्रोजेक्शन लैंप ऑन करो।
2: करता हूं।
1: हाँ, और सुनो,
2: हाँ,
1: आप कमरे में अंधेरा करो।
2: एक मिनट।
1: हाँ,
2: मैं ये लाइट बंद कर देता हूं।
1: हाँ ठीक है, और सुनो, स्क्रीन ऑन करो।
2: हाँ ठीक है।
3: अरे वाह जॉन,
1: हाँ
3: देखो सामने।
1: अरे हाँ,
3: क्या बात है।
1: ये तो कमाल हो गया। मैंने कहा था ना कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी।
3: हाँ जॉन,
1: हाँ
3: हमें कामयाबी मिल गई। कितनी मेहनत की थी हमने।
1: हाँ
3: जॉन, बहुत बहुत बधाई हो।
1: तुम्हें विलियम बहुत बहुत बधाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है। वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी बेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी बेयर।
2: जी साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ, आइए।
2: हाँ आइए, इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
3: इधर।
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
1: ये तो कमाल हो गया, आंखों पर विश्वास नहीं होता। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन, इट्स अ मिरेकल।
2: शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर्ड अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

समय आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे जनाब मुस्तजाबुद्दीन मलिक का तहरीर करदा फीचर जो हमने दास्तां उनकी सुनाई। ये फीचर राजा मेहदी अली खां की शख्सियत और खिदमात के हवाले से दूसरा और आखिरी हिस्सा है। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।

और स्वामी लीजिए, सुनिए अनपढ़ फिल्म का नगमा महेंद्र कपूर की आवाज में। नगमा निगार रचा मीदेली खान, मौसीकार मदन मोहन।

सन 1962 में आई फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में राजा मेहदी अली खां और ओपी नैयर साथ साथ थे और दोनों ने इस फिल्म में बेहतर

0: चांद जर्द जर्द है, चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का हल्का हल्का दर्द है, चांद जर्द जर्द है।
1: राजा मेहदी अली खान और मदन मोहन का सबसे शाहकार काम सन 1962 में आई फिल्म अनपढ़ के जरिए सामने आया। आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब इस फिल्म के गाने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे बड़े सगीर के कानों में रस न घोलते हो।

अकबर के सभी गानों को लता मंगेशकर ने निहायत खूबसूरती से गाया, जैसे है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करें मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना सके तो वही कहें कि मैं क्या करूं।

राजा मेहदी अली खान ने फिल्मों के लिए कमोबेश 400 के करीब गाने लिखे और ये बहुत मकबूल हुए। आज भी ये नगमे हमारी थकी समातों में शहद खोलते हैं।

इसमें कोई शक नहीं कि राजा मेहदी अली खां की फिल्मी शायरी आबिज़र से लिखी जाने के लायक है। उन्होंने शकील, साहिर और मजरू के उरूज के जमाने में अपने नाम और काम का डंका बजवाया, जो कोई मामूली काम न था।

राजा मेहदी अली खान ने अपनी खूबसूरत गजलों और गीतों से दिलों पर राज किया। उनके बाज गानों का एक एक लफ्ज आज भी लोगों के जहन पर नक्श है।

सैयद अली खां के सुरीले गीतों में बहुत से ऐसे हैं जो हमको बेखुदी और सरशारी के आलम में पहुंचा देते हैं। उनका ये गाना तो आज भी दिलों पर नक्श है।

राजा मेरी अली खां के गानों में एक गहरी नगमगी, अमीर गनायत और दिल फरेबी है। उनके अल्फाज में आबशारों का बहाव और शफक के तमाम रंग बिखरे मिलते हैं।

ख्वाजा मीर अली खान ने जो लिखा वो सीधा दिल से निकला और दिल में जज्ब हो गया। आज भी बर सगीर की फजाओं में उनके नगमे गूंजते हैं तो एक अजीब सहर तारी हो जाता है और दिल दिमाग रक्स कुना हो जाते हैं। सन 1962 में आई फिल्म आपकी परछाइयां का ये गाना उनकी एक लाजवाब तखलीक है।

1946 में आई फिल्म वो कौन थी नाहमरेज फिल्मों की फहरिस्त में एक हसीन इजाफा थी। इसकी मौसीकी और इसके गानों में एक जादू था जिसके असर में आज तक हम सब गिरफ्तार हैं।

सन 70 की दहाई से राजा मेहदी अली खां फिल्मों से कनाराकश होते गए। इस दौरान उन्होंने अपनी मिजाहिया शायरी को सजाने संवारने का काम किया। फिल्म भूमिका में शामिल ये गाना उनके आखिरी गानों में

0: को आम लोग उनकी फिल्मी नगमनिगारी के हवाले से जानते थे। आज भी कभी लोग इस बात से वाकिफ हैं कि राजा मेहदी अली खां उर्दू अदब में तंजो मिजा निगारी के मैदान में एक जमाने में शायरे फिल्तन के नाम से मशहूर थे और अपना एक मखसूस अंदाज रखते थे। उर्दू मजाहिया अदब की तारीख में राजा मेहदी अली खां का नाम हमेशा अदब से लिया जाएगा। आमतौर से मिजाहिया शायरी कभी थोड़ी बहुत तो कभी ढकी छुपी फहाशी व बद ख्याली के इस्तेमाल से अपनी शायरी में असर पैदा करते हैं, लेकिन राजा मेहदी अली खां की शायरी इन इल्जाम से कतई पाक थी। राजा मेहदी अली खां की एक नज्म में एक लड़की अपनी माँ से जरूरत रिश्ता के इश्तेहार के साथ तस्वीर देखते हुए कहती है,
1: मम्मी इससे नहीं तौबा करूंगी कदर खाक इसकी, मुझे लगता है डर इससे बहुत लंबी है ना किसकी। हुई शादी तो पहला काम मैं डाइवोर्स मांगूंगी, हुई शादी तो पहला काम मैं डाइवोर्स मांगूंगी, मैं इसकी नाक पर क्या अपना ओवर कोट टांगूंगी।
0: एक दूसरे जरूरत रिश्ता के इश्तेहार के साथ लड़का अपनी माँ से कहता है,
1: पुलिस कप्तान की पोती है ये, इससे नहीं मम्मी, जहाँ डाटा पुलिस आ जाएगी फौरन वही मम्मी, जरा फूफू किया तो अपने डैडी को बता देगी, ये खुद बाहर रहेगी और मुझे अंदर करा देगी।
0: मौलाना हाली की मुसद्दस के अंदाज में चोर की दुआ भी एक मजे की नज्म है।
1: ऐ खालिक़े हर अर्ज़ो समा वक्त दुआ है, ऐ खालिक़े हर अर्ज़ो समा वक्त दुआ है, बंदे पे तेरे आज अजब वक्त पड़ा है, पहले भी हर आफत से तूने मुझे बचाया, दायम रहा मुझ पर तेरे अल्ताफ का साया, जब नाम तेरा लेके कोई नकब लगाई, हर काम की तदबीर मुझे तुझने सुझाई, सच तो ये है कुत्तों को सुला रखता है तू ही, मेरे लिए दरवाजा खुला रखता है तू ही। राजा मेहंदी अली खां की एक पैरोडी मिर्जा गालिब और उनकी बीवी के कुछ अशार इस तरह से हैं। इशरत बीवी है शौहर में फना हो जाना, ना कि हर बात में शौहर से खफा हो जाना, रोटियों से भी है हम महरूम अल्लाह अल्लाह, बावर आया हमें बीवी का खुदा हो जाना, दिल से मिटना तेरे रोते हुए बच्चों का ख्याल, हो गया गोश से नाखून का जुदा हो जाना, दर्द सर पहले ही था मार के डंडा बोली, दर्द सर पहले ही था मार के डंडा बोली, दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। वालिदा मीर नन्हे मीर के सरहाने, राजा मेहदी अली खां की ये भी एक दिलचस्प पैरोडी है जो कि इस तरह से है, बुआ चावल न इस कमरे में तोलो, बुआ चावल न इस कमरे में तोलो, न चाबी के लिए तकिया टटोलो, बड़ी सर्दी है दरवाजा न खोलो, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, ये तड़पे दिन में और रातों को जागे, ये तड़पे दिन में और रातों को जागे, अभी से लड़कियों के पीछे भागे, किसी लैला पे आशिक हो गया है, अभी टुक रोते रोते सो गया है।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में आप सुन रहे थे, ये नगमा फिल्म थी आए दिन बहार के। नगमा निगार थे आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब सुनिए आर डी बर्मन की मौसीकी से जय नगमा, आवाज किशोर कुमार की, ये फिल्म है बुढ़ा मिल गया।

जिस फिल्म पर नगमा आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज़ में, नगमा निगाती नीलेश मिश्रा, मौसीकार MM करीम। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और साथियों को, फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, मौसीकार है रविंद्र जैन।

दुनिया जले तो जले।

0: प्यार का टिकट न तू सुल्फ झटक न तू पैर पटक अरे ऐसे न मटक दिल गया है भटक।
1: सामिन इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म मौसीकी का यह प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम के 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
2: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। भारत ने आबनाए हुरमुज में कई बहरी जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अल-अक़वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। जनूब मगरबी जापान के कुमा मोटो इलाके में शदीद जलजिला आने से 13 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। और आज दुनिया भर में शेरों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। शेरों के तहफ्फुज की कोशिशों में भारत सबसे आगे है और दुनिया के कुल शेरों की तादाद में से लगभग 70% भारत में पाए जाते हैं। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 2 दिन के दौरान पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के दौरान कम से कम 40 अफराद हलाक और बहुत से दूसरे जख्मी हो गए। खित्ते में फैली हुई बेचैनी को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने बहीमाना कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर रखा है। यूनाइटेड कश्मीर आवामी नेशनल पार्टी UKPNP ने गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि 5 जून से 100 से ज़्यादा अफराद को हलाक किया जा चुका है। ग्रुप ने अक़वामे मुत्तहिदा यूरोपीय यूनियन और बैन अक़वामी बिरादरी पर जोर दिया है कि आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी मदद करें और इस तरह के वाक़यात की आज़ादाना और गैर जानबदाराना जाँच कराई जाए। इसके अलावा इंसानी हकूक़ से मुतालिक बैन अक़वामी ज़िम्मेदारियों का पास रखा जाए। इसी दौरान वजारत खारजा ने फिर कहा है कि मरकज़ के ज़रिए इंतज़ाम

वाकिया कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरला और माहे में भी कल तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी इलाके, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक गरज चमक होने का इम्कान है। अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि ईरान के सिपाही पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने मगरबी एशिया के खित्ते में तैनात अमरीकी फोर्सेज पर अचानक हमले की कोशिश करते हुए कल रात कई बैलिस्टिक मिसाइल दागे। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि ईरान के सभी मिसाइलों को कामयाबी के साथ मार गिराया गया और अमेरिकी फोर्सेज पूरी तरह चौकस और मुस्तैद हैं। अमेरिका ने यह दावा भी किया है कि गुज़श्ता 72 घंटे के दौरान ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने 30 ड्रोन हमले किए। जवाबी कार्रवाई करते हुए अमेरिका की मरकजी कमान और सऊदी अरब की मुसल्ह फोर्सेज ने इराक में ये इल्ज़ाम लगाते हुए हमले किए कि ईरान के पासदारान इनकलाब की फोर्सेज ने ईरान से वाबस्ता ग्रुपों को अमरीकी फोर्सेज और सऊदी अरब के तवानाई के बुनियादी ढांचे पर हमले करने को कहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग मीटिंगें की। दोनों मीटिंगें ओवल ऑफिस में बंद कमरे में हुई। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सदर ट्रंप ने सदर जेलेंस्की और वजीर आजम नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंगें खत्म की हैं। दोनों मीटिंगें मुस्बत और नतीजा खेज रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारत के सफारतखाने ने बताया है कि वो एमवी अमीरी और उस पर सवार भारतीय जहाजियों के बारे में बहुत फिक्रमंद है और इस मामले को अव्वलीन तरजीह देना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सफारतखाने ने यह जानकारी दी है कि उसने ये भी कहा है कि इस पर सवार तमाम भारतीयों की सलामती और तहफ्फुज़ के बारे में तमाम मुतअल्लिकीन के साथ लगातार राबता कायम किए हुए है। आखिर में खास खास खबरें एक बार और। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी फौज की वहशियाना कार्रवाई के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40 तक पहुंच गई है। भारत ने अबनाए हुरमुज में कई बहरे जहाजों पर हालिया हमलों की पुरजोर मजम्मत की है और कहा है कि बैन अक्वामी आबी गुजरगाहों के रास्ते तजारत बहाल की जानी चाहिए। जुनूब मगरबी जापान के कुमामोटो इलाके में शदीद जल्जला आने से 13 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के नशरियात समाप्त कर रहे थे। मीडियम और एफएम पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। सामीन, अब से लेकर रात 10:24 तक आप हमारी नशरियात मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, एफएम 101 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। मीडियम वेव त्रिज्ञानिंग शुजबी नजबी किलो हर्ट्स, मीडियम वेव सोचिक नगब ज्ञानिंग शुजबी नजबी किलो हर्ट्स, एफ एम रिया शिरा चिक में कर्ट, दोनों मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर का दियो आकाशवाणी करगिल इन दिरी इफ्र चुकपत पी प्रोग्राम उन खुरेगा बुल्ला वजीर नफरपान यंती खदमत लाल एपिसोड प्रोग्राम यन खान साहब खदमत लंग जिजू नसलाम पफरत मोचन सोशिक दिरी जक पो बोदू जुलाई जेंगी शुरसरगु वक्त पो फितो के तुसोत गाना में चिक संसुक कसता प्रोग्राम एक उसक पे कफर चुके दोया प्रोग्राम सदाकत दी प्रोग्राम में रखते के यन मजा सहमा कुरान तिलावत में तर्जुमा
1: अऊज़ु बिल्लाह

Res nga tans yang de kas nanma tut met pis ya sir mang kachik parliament anu lens zerba son kongs di bilpo taliban ni khachaw na samzon do na taliban ni len lam malla khong ni zes yang di bilpo khong mi phaluk si wazir azam itar chat pos imtihani nizami ka taliban lar dyang po yang tan po son se zes भारतीस अपना ये हारमोज यानुक बहरी जहाज खची का ताजा सोंगन हमलाओं ने शंटे बुखा बसीन यंग खत्यां सों लेने जहाज रानी दोना सिविल बुनियादी सरसुक्सी चलाओं लंग तक्षना रुच्चे लसंगनुन बन रुच्चार गोशे इंजेस अगवामे मुतहदें भारती मुस्तकिल नुमाइंदा पी हरीशिस खत्यानु योतखन हीलिंग पैनुक निंसे बर रिक्तांगन हमलाओं यंग गोजुक दोना हीलिंग पास के चिर दियंग छचा इंजर बसों कौनस जीएसएफ जीएफएस गैलेक्सी एमटी अलबागिया एमटी मोम्बासा नद्रसे यंग बहरी जहाजुनी का दिल जानुक अब नए हार्मोज यंग छयों चना हमला और निर्षंटे बुखाबासों कौनस अंतांगन बेनुलकवामी आबे गुजरगांव नियानुक बहरी जहाजुनी जगक में पदों न शख्सित न जम से डुलशमंस पो छचुक पर गोशाइन जरित सोरतांसीन मरकजी नाहमंगे वजीर अमित शाह आसामी वजीर आला डॉक्टर हिमांता बिश्वा शर्मा नयम्बोस पेरातां से रुख सी फ्रलुक्स निल तलुक्स बसीन दिमल सानुक बरसम सी आसामी अनुक शंटे छुरु दियों से होत सोशल मीडिया पोस्ट चिके अनुक डॉक्टर शर्मा दिस पेरान गंचुक सीन खोंस जिनाब शाह छुरु दिस ट्रोली का सोंस योत भी हालत ना लुक्स निका सल्पो बसे छोरतां मसों में दोना भारत सरकारी छोसना दी छुरुई ती इज्रेल छखन मलसाने नुक समर चोखे लसुन थेरल योत पिलसुन दोनर गोजदो ती खखचन रोक्स गांव मा लेप चुक पीर दियामा बसिन दियाबाने नुक शिव सागर गोलाघाट क्रेडियो दोना जोरहाटी मलसानी छुरु दी खिमो जोस्ताव नजब्रेल सोमी जिल्ला ने अनुक रोक्सी दोना बाजात बात करी लसुन लेगी ना खिमो कर पर न डुलिन योतीन यानी मुखबर संग इजन शाज बाजत खुदाई फगरें

0: Derentes Burgi haberinden yeni netmin Miriam ve Dona Pemik ediyor karşıfani kargilin. Vaspatı sözgan emersin füsun su kasıta Dr. Anil Tripathi kana Ardalık siz korrelatif sek fırçuget yan mazat.
1: दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। दोस्तों बहुत बार हमारे आसपास होता है कि भाई फला व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है। अब बहुत बार हम उपलब्ध भी होते हैं, फिर भी हम कई बार भ्रमवश या कहें हम इसकी जानकारी ना होने की वजह से हम रक्तदान नहीं करते। हमें लगता है कि शायद हम रक्तदान कर देंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे या हमें ब्लड की कमी हो जाएगी। और कई बार तो हम इसकी डर के वजह से कि भी पता नहीं रक्तदान कैसे होगा, कहाँ होगा और ये किस प्रकार होता है, तो कई बार इन ढेर सारी जानकारियों के अभाव में हम उस लाभ से वंचित रह जाते हैं, हम वो ये पुनीत कार्य नहीं करते। अब रक्तदान कैसे होता है, कहाँ कराया जाता है और रक्तदान करने से क्या कोई नुकसान तो नहीं होता, आइए ये ढेर सारी जानकारियां हम लेते हैं केजीएमयू की प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी जी से। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। बहुत बार लोगों में ये भ्रम होता है और कई बार इसका डर होता है कि भाई हम रक्तदान करने जा रहे हैं, कहीं हमें कोई समस्या तो नहीं होगी, तो इसके संदर्भ में आज हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
2: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसा होता है
1: जी जी।
2: इसलिए हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है कभी कभी
1: जी जी।
2: अगर कोई मरीज सीरियस है और उसको रक्त की आवश्यकता होती है, उनके घर वालों से कहते हैं कि आप रक्त का इंतजाम करना है, रक्त देना है
1: जी जी,
2: तो लोग तैयार जल्दी नहीं होते। इसका मुख्य कारण जैसा आपने कहा कि लोगों में भ्रम है, सही जानकारी नहीं
1: जी
2: है
1: जी जी।
2: लोग समझते हैं कि खून देने से उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा।
1: हाँ।
2: देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने पर रक्त दे सकता है
1: जी,
2: क्योंकि हमारे शरीर में इतनी अच्छी क्षमता होती है रक्त बनाने की कि रक्त देने के कुछ घंटों बाद रक्त का वॉल्यूम नॉर्मल हो जाता है और जो कुछ कमी रहती है वो कुछ दिनों में पूरा हो जाता है
1: जी।
2: इतना ही नहीं, रक्त देने के बहुत फायदे भी होते हैं। तो कहने का मतलब है नुकसान कोई नहीं
1: जी,
2: और फायदा ही फायदा
1: है जी। तो डॉक्टर साहब कोई विशेष उम्र है कि भाई इस उम्र के बाद आप रक्तदान कर सकते हैं?
2: जी हाँ, नियम के मुताबिक 18 साल से लेकर 60 साल, वैसे अब 65 साल भी सोचा जा रहा है
1: जी जी,
2: लेकिन आमतौर पर 18 से 60 साल के बीच कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्त दे सकता है और साथ में वजन भी एक

0: पैरामीटर है,
1: जी जी जी
0: 50 किलो होना चाहिए वजन, बहुत पतले दुबले व्यक्ति से नहीं, 50 किलो या उसके ऊपर होना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति पूर्णतया स्वस्थ हो और 18 से 60 के बीच हो।
0: और देखिए इतना ही नहीं, और हीमोग्लोबिन भी उसका सामान्य होना चाहिए,
1: जी जी जी
0: क्योंकि जब रक्त दे रहा है और अगर हीमोग्लोबिन कम है तो रक्त देने के बाद उसे तब कमजोरी आ सकती है। इस वजह से हीमोग्लोबिन कम से कम 12.5 ग्राम प्रतिशत होना चाहिए। जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन 12 या 13 ग्राम से लेकर 16 ग्राम प्रतिशत होती है,
1: जी जी
0: और स्त्रियों में 12 से 14 होती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम प्रतिशत से ज्यादा है तभी उसे रख लिया जाता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, जैसे कोई एक बार आपने रक्तदान कर दिया
0: जी,
1: तो उसके किसी निश्चित सीमा के बाद रक्तदान किया जा सकता है या कितने दिनों तक?
0: 3 महीने बाद।
1: 3 महीने बाद?
0: 3 महीने बाद, और स्त्रियों में कहा जाता है कि 4 महीने बाद।
1: जी जी जी
0: और स्त्रियों में गर्भावस्था के समय रक्त नहीं दे सकती, या दूध पिला रही हो बच्चे को
1: जी
0: तब,
1: जी
0: या डिलीवरी के 6 महीने तक उसे रक्त नहीं लेते, क्योंकि इनमें वैसे भी आयरन की कमी रहती है और बहुत डिमांड रहती है शरीर में,
1: जी जी जी
0: तो इनसे रक्त नहीं लिया जाता।
1: जी जी डॉक्टर साहब, जैसे रक्तदान की बात रही है तो ये कोई जो विशेष कोई ऐसे स्थान बनाए जाते हैं जहां समय समय पर रक्तदान होते रहते हैं?
0: इसमें देखिए सारे मेडिकल कॉलेजेस में, बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक होता है।
1: जी जी
0: वहां ब्लड बैंक पर कभी भी कोई जाकर के स्वतः स्वैच्छिक रक्तदान कर सकता है।
1: जी जी
0: इसमें एक बात और हम क्लियर करना चाहेंगे कि रक्तदान 2 तरह का है, कह लीजिए। एक तो होता है कि आपका मरीज अगर बीमार है
1: जी जी
0: और उसको रक्त की आवश्यकता होती है, उस समय अगर आपको अपने मरीज के लिए रक्त देना पड़े, रक्तदान तो है
1: जी जी,
0: लेकिन इसे बहुत ही स्वैच्छिक वाला नहीं कहा जाएगा,
1: ये स्वैच्छिक नहीं है।
0: और आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे भी ब्लड समय समय पर दिया करते हैं।
1: जी जी,
0: सही माने तो इसको स्वैच्छिक रक्तदान कहते हैं।
1: जी,
0: और
1: जी,
0: सही दान ये है, क्योंकि दान देखिए वो होता है जिसको देते हैं उससे आप कोई आशा न रखें,
1: जी जी,
0: तभी दान होता है।
1: जी जी,
0: तो अगर आप रक्तदान रक्त दे के आ रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि किसकी जान बचाएगा,
1: जी जी,
0: आपकी इच्छा है दान करने की, आप दान करके चले आए।
1: जी जी, जी
0: तो कहने का मतलब कि रक्तदान सही स्वैच्छिक रक्तदान है।
1: जी जी,
0: और ये कोई भी ब्लड बैंक में जा सकता है।
1: जी जी,
0: वहां उसका परीक्षण होता है, और परीक्षण में देखिए केवल हीमोग्लोबिन की मात्रा, वजन और उम्र ही नहीं देखा जाता, उसमें यह भी देखा जाता है कि उसमें रोग होने की कोई संभावना ऐसा कोई है जो मरीज में हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के अगर यौन पार्टनर, सेक्स पार्टनर बहुत ज्यादा है, या समलैंगिक है,
1: जी जी,
0: या लगता है कि उसकी जो जो समाज में जो एक तरह की छवि है यौन क्रिया को लेकर के,
1: जी,
0: उसमें
1: जी,
0: संभावना रहती है कि HIV ना हो। हालांकि जो रक्त लिया जाता है उसमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, HIV और मलेरिया, ये सब की जांच की जाती है। जब रक्त बिल्कुल सही होता है तभी वो दिया जाता है।
1: डॉक्टर साहब, कई बार ये होता है कि भाई हमने रक्तदान कर दिया
0: जी,
1: और हमें लोगों में आभास होने लगा कि हमें ये कमजोरी होती लगती है, तो क्या ये सच है कि लोगों में कमजोरी होने लगी है?
0: ये मानसिक कमजोरी ज्यादा है सोचने की,
1: जी जी,
0: शारीरिक कमजोरी नहीं होती। फिर भी चूंकि करीब 250-300 ml ब्लड निकाला जाता है, इसलिए सलाह दी जाती है कि कुछ घंटे तक बहुत कोई कठिन परिश्रम ना करें।
1: तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी आत्मसात की होगी, और अब जब भी हमारे किसी प्रियजन को इसकी आवश्यकता होगी हम स्वेच्छा से रक्तदान करेंगे। बस इसकी शर्त यही है कि हम पहले पूर्णतया स्वस्थ हों, हम तभी रक्तदान करें। तो श्रोताओं, हम डॉक्टर साहब को देते हैं अपनी तरफ से धन्यवाद। डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: Васпоту сотгана мерчимчи согасонсу касата шербаначин фиа программ прочугетген мазат программ прочуган пен асгар алии.

0: ना दुख से, कमरा चें दुख से, यदा दी इंटरनेट ना दे सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी यूज बसे गरंग इंप्रूव शशे में जो, बल्कि मेंटल हेल्थ पो अगर कतोर गले कतुलु सुख सम नची चार कोशिंग आता आउटसाइड यानी नंग ना बाहर ला एक्टिविटीज बार कोशिंग जो, जैसे कि नंग लाज चीन या खामा अतामा हेल्प ची बना सक्याल छीक ना ना चामल सुख तालुक्स बना नॉर्बलांग सगारता ना या रंगे फ्रेंड नहीं हम बहुत सबसे आउटडोर गेम चीज़ ना दी निज बात से चीज़ अच्छी याना जने मेंटल हेल्थ पर गैले ग्रुशिन अब तो दी टेक्नोलॉजी नामज़ा यारे जैसे कि मोबाइल वोबाइल जो दांस से तू से नो मानेंगे आती यूट्यून काफी शिकार शेड जो जो बिल्कुल वाकई जो लेक से ना खतरा खतरनाक दो जो असगर साहब जो किंग आता थोम शेड किंग आती यूट्यू ने काफी हद तक सुसाइड बंगाता पता शेद कि सुसाइड बेवजह खोना मेंटल हेल्थ ही इशू इन मेंटल हेल्थ ही वजह से का सुसाइड केस बड़ी सोसिन बिल्कुल
1: बिल्कुल बक्सी जो छा ना दी मेंटल हेल्थ पर गैला चुमी मिना यानी गतंग दिमागी तौर पर गतंग हृदय से लुस पी मिंग ना गजुक तरीका रिक यार जर यंग अति मिमा सुन ला यानी जर गज खास कर गतंग शर्बाना चुना नुखा जो खोस यानी गति लोसो लोसो गेम सुने नु हार्स यहाँ पर सुना नु खोस खगलन चा इन इन या बाकी गजुक तरीका रिक दोशिस
0: सबसे तरीका ना दिया जो कि अच्छी बार क्वेश्चन जन का यू चे अगर कतो मेंटल हेल्थ सही कतो सम ना पहला पॉइंट पुनी दिया इतु जो जो कि रेगुलर एक्सरसाइज यारां खुदा ने इमाम शजदे मोत उगला से खस्तुए का खाली पेट छू की लाजगा थू से यारेस एक्सरसाइज आधा घंटा कतो बना यारेस तो यारेस मन हफ्ता चें यारी जिंदगी यारी लाइफ वो यारी बॉडी बिल्कुल अलग एनर्जी को मैं सोचे निज रेसी गला बसेंगी ताचा टाइम का दक्षा सी नाम जेंग आता सु इन जो शिकार शेनु जो मोबाइल इंगरांग इन ना यारांग तक्ष बच्चे जो कि आते ची बच्चा की मोबाइल पुम लेक्स ने इंपोर्टेंट शी माता माँ दी मोबाइल पु जरूरत ही लेक्स ने दूल मन मोहब्बत ची मजाक पांग आते जेंग आती प्रॉपर टाइम का नीत लोक चस पु लेक्स ने जरूरी इन दूसरा आता आती हॉबीज योत प्रायर योत फ्याग योत दून टाइम का मना उससे भी आता आती मेंटल हेल्थ स्ट्रेस कम चाचे जिन वीर से सबसे इंपॉर्टेंट पिन आता आती यानी रियाला सोसाइटी ने मुझे लेख सेना जरूर रियाला सोसाइटी ने मुझे यहाँ पर सेनों ने हिस्सा लें जस्पू लेख सेना जरूरीन दुनिया यहाँ पर अच्छे जग जो दक्षता से युद्ध ने दूध हो मचे ने जो कि रंगे पेरेंट ना रंगे आम आमोस्ट्रीमो ने हम बो खामी लाशी ना सक्या दे लाशी ना दून बाग काम तो हो मचे ने जो दू ने हिस्सा लें जस्पू यंता गती युद्ध ला दी मेंटल हेल्थ पे ना यानी दूर छे असा यानी लेख से न फन के चीज इंजो गस बख्शीश
1: बख्शीश जो छन खुदा ना खस्ता गा में मां छन को मेरे गते तखसना रिक जर संग सिम्टम्स रि जर संग नीत मा होना हुन मित यानी जल्दी खाय हो जस बो यान दजो तखसना रिक नते से रिस मोल संग पगजी गा निम मा छन दुजो शियो न गतो चमचिक जोसपा को ओदे खसपानी का सोंसे खास कर गते सैक रिसर्च में जो ओदे डॉक्टर ने का सोंसे खसपानी का सोंसे चेसिस को समझ खासन बख्शिस
0: बख्शिस जो मेंटल हेल्थ दी इशू को अगर गता कम करना खत्म बुक समना सबसे पहला ना गता दे सेक्रेटरीज की जो दिमागी तौर का खुन से मतलब यानी लते ता जो डॉक्टर ने उसे गते सलाहियत लेन जो दोनों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यारा मेंटल हेल्थ ही मन बेसिक दवाई चिचिन या ना मेडिटेशन योगा निस रेसी दू बस यहाँ या ना मन चाह दवाई मैथ निस रेसी यारा यारे का काउंसिलिंग इंजू यार काउंसिलिंग जितना ग्याला मी करन लेने उतना यारा मेंटल हेल्थ ही इशू प्रॉब्लम से हल चचिन जो क्योंकि इसमान इस इतना वो मतलब इतना इफेक्ट चाचे मीन सबसे इफेक्टिव यारा जितना मोतुल्ला से खसने का योगा बना एक्सरसाइज बना दूना
1: बस जो ना दी मेंटल हेल्थ गता हृदय से लुस पी मिंग ना गति खाम अपन पेरेंट्स फैस जंग दोना एम्बो एम्बो गति स्कूली टीचर उनी गजुक खकरिक गजुक रोल रिक लुस पशन बस
0: बिल्कुल जो गति पेरेंट उल्ला रंग फ्री छन ला खर्सो मसी गलस पेरा मिजर चा को प्रेशर मिता चा यान मेसा पो को अप्रिशिएट बचा क्योंकि हर फिंग खुदा खुरी सलाहियत ची काबिलियत ची तान सोचिन पेरेंट ला दे काबिलियत पु दे सलाहियत पु खुरी फ्रेन थो मर गोशिन टीचर ला इन्ना स्कूल का फ्रूना सुने सुने फिर बचा डिफरेंशिएट में बचा खचिए सिल्वा यों चीन खचिए सिल्वा गोरे लोपशिन चाना ये सब इकट्ठा जाग से यानी पेरेंट ला इन्ना रंग फूनी दी फिजिकल मिन मा कोई सिर्फ जाचा थूचे का ध्यान मता मा कोई बिहेवियर पे का कोई मेंटल हेल्थ का लेख से ना खचन बसे تعلق بھی لکھ سنا ضرورت ہے جو
1: بالکل بخشی جو سنا لگا تھا دن میں نام سے جو گما جنگ سوچا ہے جو سوشل

0: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक से लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉ. सिंह ने कहा कि विभिन्न दलों द्वारा शासित राज्यों में पेपर लीक होने की घटनाएं हुई हैं। विपक्ष के आचरण पर डॉ. सिंह ने कहा कि जब एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा हो रही है तो विपक्ष सुझाव देने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उधर राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक में संशोधन केवल एक विधायी परिवर्तन नहीं है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है जो राष्ट्र के गौरव को ठेस पहुंचाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका, नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली, सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक आज 889 अंक बढ़कर 77,655 पर पहुंच गया। निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में तजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप सिंह गिल ने शॉटपुट फाइनल में जगह बना ली है। अनिमेश कुजुर 200 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। आज रात मनप्रीत कौर महिला शॉटपुट फाइनल में खेलेंगी। श्री शंकर मुरली और लोकेश सत्यनाथन ऊंची कूद के फाइनल में और पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टीपल चेज के फाइनल में चुनौती पेश करेंगी। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दिल्ली, कोंकण, गोवा, केरल, माहे में कल तक तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Lok Sabha today passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of properties of convicted offenders. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said the new bill is a reaffirmation of the government's commitment to safeguard the welfare of students and youth.
2: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
1: Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used. He said since no shots were fired, the question of issuing an order does not arise, as the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Rahul Gandhi and demanded an apology from him in the House for his remarks. Earlier participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said students' protest on the NEET issue was not violence or hatred, but a deep expression of the youth, and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, Jan Gan Man. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine, or both. After the passage of the bill, the upper house was adjourned till tomorrow. To address the deteriorating air quality challenge, the government has approved a vehicle fleet renewal initiative named Parivartan Program for accelerated renewal and incentivization of vehicle assets for reducing transport air pollution and network emissions. The scheme aims to replace old and high-emission trucks and buses in the Delhi National Capital Region with Cleaner Bharat Stage BS6 compliant and electric.

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepis cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyanchain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu donarin ginseyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: लोन जर बचातंग यंग द लोन स्ट्रोलिका ngates ngati business shi establish ba chatang ningan yadi hukumat is di scheme stolika ngane rifila rocks beaming na disus program chi chose tang gawenu ngane ranga behtareen tarike ka business shi ba ya behtareen tarike ka business shi ngates install be fila ngata ngin chewtang yang dianu ngata nga 50 lakh supi loan tami spera tang se yotam ningen kanun sakwasi khakchen sperau chi injerna loan nang atanga lokso lokso jostika bengu nanu ngata loan yotang ni hukumat la di pm egp zere di loan scheme pu choya char gos pasung yang dianu khasiya chik chi yotjerna sapwasi behtarin khasiya chingata pm egp anu diyotang kingane yaranga sc st ex-servicemen, women, duni fila, duna handicapped person fila, ngatanga 35% subsidy yotang. Gasuchik generally openly quens the scheme po avail katuba nakatun khonga category chairman nakato khonga 15-25% subsidy yotang. Ni sabse ngatanga kakchan in michis po doinang ki hukumat is ngatanga diloni strolika 35% subsidy tangsi yotang. ताकि आता में मास कोला शर्बाना चुन कोला खुंती बिजनेस पोर दे में बसे एस्टेब्लिश बागने नुक यंग दी बिजनेस स्ट्रोली का खुंगे इस खुंती में छे अनुक योंग्यो रिकमाई बोक यंग यंबो यंबो खुंती में छे और ग्यालवे बसे स्प्राल बागने नुक कसने यन खानुन आता फोकस पदे का तामर गुशाइनां दां दिनिंग गने यदी फाइल हिंदुस्तान यानुक गने यारांगा फोकस पो लक्षेस ना गने यदी बिजनेस का तामर गुशाइनां चेजरना मस पहला जरे सोंग किंग ने रि शर्बना चुंगी लस्खमेत पे आबादी खिमो छान यंबो यंबो ngane ari fail hindustani hukumat la du chig mimas la nokri tang chaspo mushkil la shik inang de fila ngane yaranga rang kame ge khrase rang is yang kun la nokri tang mi ngane res fralux bar u shenang ngane yara khimeti anuk job seeker maldan ma job provider dan mar go shenang ningas ngaris parode ke jakse enta supa ngatanga di district industries center kargili naljos गसो स्कीम का त्यों मजर चस्पो एंता सुपा ngon chupi mingna enta supa facebook district lobjang longtok industrial promotion officer kargili kana enta supa obi besit interview for chuget akashwani kargili chupi dring district industries center kargil lepsyot ngachembos peratam mingna lobjang longtok industrial promotion officer kargil ngachembu juksyot Chanangates Industries Nang Jones, District Industries Center Kargili Nang Jones, Sam Singatang, Mimakuni Fantosimina, Hukumati Scheme Josetang, other scheme in Skola in Tasupa, District Fruchuga, Tresolas, Navaza, Savas Nanla, Yakubesa,
1: Yazine
0: Akashwani Kargili, Pura Timi Chosna, Yara, Ojus Remuset, Ju, Eres Yeri, Rinjan Tusan Tustase, Nacha, Eres Time Tansal. छना सर सर गुमान यारा जो ठीक पजूंगा था माती डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सी स्कोर ला डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर करगिल स्कोर ला रंग आता मीमास को ला डिटेल ची मोर्चा जूंगा था दी इंडस्ट्रीज पु चीफ लंग आता गवर्नमेंट एस्टेब्लिश बसें दी अंगा चो स्कीम के त्यों मत यंग आता मीमास को ला का चो गदी अन फायदा थप चेंज दर्शस पे रे मोर्चा जुका से
1: गुमान तन संगमा ला जुले सलाम अलैकुम ते हिबे अनुपजान सिस्टम गए दसा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर ना ऐसा IPO last was a low cheek now petal sonsen. Then a main Naji district industry center was set up, but just a main Maksat Pachin Susuna. The main Mungata Kargil Sosudoya or Nata Ladasana, Ladas and Nata industries say related Chi Lazuna to promote batches. Chessingata industries department industrial estate Konangala Hotsuga. Kavanangija on the Aganija plot Chitong Nangina Aga unit set up Benzama. Tekangira Jagatun Ma Rin Makamika. So, the Nazongata, Daksa Filangata industrial estate, Nis Yotnata, Chamchik Nakurbata. So, Soma Sumata Duben, the Sanskar Lachik, Dras Lachik, Tenangata Airport Rotika, Nata Chandata, Tekam Duben, the Angata, the Exo Bis Canale, then the main Gata Masat, we know Gata, Samshingata, Chichi Gata, manufacturing sector, and Alas Baduya, Hachi service sector, and Alas Bin Samna, Kolangata, Rose Batches, Yatu Batches. Takachi ngata scheme alag alag hot ngati department na. The scheme samay school na jese ngata PMG.

0: पीजे तो पीएमएफ मीजे तो ते संग में ना ते ने आज मी गुण ला फायदा था सर लोन था सर लोन ने ना था सब्सिडी हम क्या
1: कैसा
0: ते सब्सिडी उन्हें क्या नहीं मी उन्हें फायदा नहीं चेस ते ने यंपु यंपु आता दस एमएसएमई नंगु हल आता आता माइक्रो स्मॉल ना मीडियम एंटरप्राइजेस मामा पोत आता लदास ला माइक्रो ना स्मॉल माने मीडियम दसा यूथ मिल मामा पे आता स्मॉल खाचिक माने दे गुण ला आता कजो प्रमोट बन बाकी फिलो कंट्रीज गुण यंपु यंग आता फिलो यंग आता इस कंट्री माते यंग आता ला इना और इंडियन अंको बाकी स्टेट गुण यंपु कजे आता कंपिटिशन टाइम देना तेने ते उन आता रोज बचे इसमें आता इंडस्ट्री सेंटर है लाज उन आता डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है आता है मी वाला एक्सपोजर टूर था ना जैसे आता है विंटर ला हर साल आता एंचांटिंग लद्दाख इवेंट जुटू लेंगे तेना आता हमेशा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडो या हैंडलूम इंडो या हैंडीक्राफ्ट इंडो चीज नको ने प्रोडक्ट ना ते उन आता है ते फिलो का एक्सपोजर था क्या नको ना फ्री ऑफ कॉस्ट को ना दुखचा लिप्त
1: कसा जो छाना मन सल्पो बसे ता डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कारगिरी स्कोर ला या ता इंडस्ट्री सेंटर पुराचा एस्टेब्लिश बचा इन या बस इन दर्शस पुंग ये रस ता मीमास को लंगन जो जो छाना सर जो ता ता ये रस दियानुक दोंग मोल बसों जो की ता मीमास को ला रोख चुए फिला सब वसी खाशन स्पेरी ngas dik ad be ju ngata ngata ngati mi cheur gyalwe baspral mi na ngata ngar gyalba base laskhi ngati laga yot poman khachen chi na ju chan ngata government sang dik focus ta sen chu pa ju ki ngata jitna ho sake ngati na ju ngati laga lakshe shi ki ngati la hunar chi na ka tun dong government is rok chu se ngata bahar le phing se expose base this story ka ngata yung gi rit len chu ngata ka bi ros base chu pa ju chan ngata di industry si the center ko ngata legin khachen center chinga ta thom chen du chu ta na ta den ok skim khachi ka dik spara ta ma thaju ga na ge re mor basa ju pm egp go ma na ta di skim po man khachen ja chorn du ju yang ta da din di tem pi ka khas ka dit tu spianu ngata pm egp ma na mangmi ngata har jaga ngata thom chen du government program sala na ngata pm egp ka lecture ta ma thom du mana chachaba sangata pm egp u ngayare sangata mi mas ko ngon chu cha ju pm egp ko ra chin dar chas pu kasa
0: kasa tene pm egp u ngal la 2008 na ngata start son sin ju ngal la na scheme alag ni ju pin la
1: kasa
0: chik chik ka ngata ju pin prime minister rozgar yojana dete to rang ya po rural employment generation program dete de is ka combine base tene ngata prime minister employment generation program dete scheme ji basa
1: kasa
0: ये स्कीम है ना चीज क्यों देना खाता आता ता आता ये सारा गवर्नमेंट इम्प्लाई थो बन देना आता पॉसिबल मन
1: पॉसिबल है
0: ता खची आता बिजनेस बन समना बिजनेस आजू बुत क्या कर रहा हूँ वाला संभव क्यों खची बिजनेस बन समना तो ने तेरा ना जी कौन ना लोन था लोन क्या मैन्युफैक्चरिंग ना सर्विस सेक्टर ना आता सेक्टर सुम क्या मैन्युफैक्चरिंग सर्विस ना ट्रेडिंग देते मगर ट्रेडिंग ना जी अलॉटमेंट क्या फिलहाल ले आले तो आता है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ना सर्विस सेक्टर ना लोन था ना तेने ते वे का सब्सिडी हो गया ता जैसे आता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सम लोन तो बनो सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने गेना 50 लाख का लोन तो बनो 50 लाख का सब्सिडी हो आता तेने गेना यूनिट लोकेशन में गाड़ी हो तेवे का फर्क छ जैसे गेना यूनिट पो रूरल एरिया ने ना गेना 35% सब्सिडी तो जैसे मान लो जिक ची आता 10 लाख उस ना कौन ना हो क्या 3 लाख 50 से सब्सिडी तो अगर कौन यूनिट पो आता रूरल एरिया ना कौन अर्बन एरिया आता अर्बन एरिया दस आता दिया म्युनिसिपल ने नहीं आता नोटिफिकेशन से अर्बन एरिया जो चिक स्केट हो जाना आता ने टीवी ने तास्ते या ना रिंगो स्पॉन्सर पे गए ते पूरा आता अर्बन एरिया ना उनका ते नंग को ये ना यूनिट कर रहा सेटअप बनना ते वे ना सब्सिडी हो क्या 25% तब आता ये ना कैटेगरी अलग होती है ना वीमेन ना एसटी ना जो चीप है और लदास पूरा एसटी सों पा तेने आता वीमेन ना संगमा सब्सिडी ये जो पो सेम हो क्या रूरल एरिया ना 35% अर्बन एरिया ना 25%
1: कैसे
0: तां ये ना जैसे आता काजो यूनिट गुन मैन्युफैक्चरिंग ना जुक छानो ना फॉल छानो ना तां ये ना जैसे मैन्युफैक्चरिंग आता लाजो ची बने जी कारपेंट्री लाज बना जी टेलरिंग बना सो आता है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग तेने आता है ना जो चामचिंग आता है मैन्युफैक्चरिंग ची बाइंग है ना ये ना नुक ते आता फॉल छानो मगर ते नुक ता खाता आता है संगमा 50 लाख सापेक्ष थो बना देना ते डिपेंड है ना प्रोजेक्ट का गेरा प्रोजेक्ट है गेरा आता ये ना कॉम्पोनेंट नीज है ना वर्किंग कैपिटल ना कैपिटल दे कैपिटल बोलेंगे ना मशीनरी चाम को ना ते वेटिंग बो वर्किंग कैपिटल बोलेंगे ना रॉ मटेरियल न्यू वाला पेने थो कुछ ते चाम होना तेने ते का फरक छ।

0: मशीनरी वो ये ना 6 लाख चाहिए मैं, 6 महीने ये ना 10 लाख सफिक तो ता मशीनरी को से का डिपेंड है मैक्सिमम का ता क्या बैठ क्या 50 लाख सफिक ये ना उन्ना इन सुकते ना जो सर्विस सेक्टर ना ये ना तो क्यों 20 लाख सफिक लोन
1: कैसे
0: सर्विस सेक्टर ना सेम इनो चीज़ होने चाहिए ना जैसे ये दी कैफे फेन समना या रेस्टोरेंट जी फेन समना जैसे ये ता एक अधूबी का टू फेस है तो देवो ना सर्विस ना फॉल्स है ते तो सम ये ना यूनिट पेन समना या आता चिक ची साइबर कैफे तो फेना चिक ची प्रिंटिंग हटी फेना दे सामा सर्विस ना होती ना सर्विस सेक्टर ना आता मैक्सिमम तो चीन ये ना 20 लाख सापेक्ष लोन तेरे सब्सिडी सेम होती है रूरल एरिया ना 35% अर्बन एरिया ना 25% ता ये ना प्रोसेस कुछ ही होती है ना आता मेन ही नोक निजा ना आता ऑनलाइन फॉर्म्स का होती है दस्ता ना आता पीएमजीपी पोर्टल सोमा डू बिजनेस दे पीएमजीपी 2.0 जेते ते वो दम फंक्शनल सोते एक दिन जिस वो मगा प्रॉपर दरों हम जुलेन ने ता एक दरों ना आता यंत्र से ना एक हफ्ते ना कंप्लीटली डूल चन ते वो पूरा डूल ना ते ने आता ये पोर्टल वो सोमा बस ने बाकी स्कीम वो सेम हो ते ते ने आता ये कने ये ना ची ची क्वेश्चन दे ना गोमा ये ना ऑनलाइन सोते पीएमजीपी ngatai izu ikan lepin ngal ngatai site ko pin pmgp kvac.online.gov.in dekhan
1: ji so
0: daksa ngatai chin so te pmgp.msme.gov.in dekhan site dega chi so te ngena application form bus kanchas
1: na sab yeres mana salpo bas ngatai di school la pmgp school la small bus on ju chan gyan ya spera chi do ti pe ju ki ngatai ga su chi ge di pmgp ka tus ka nu samna this scheme pe points available ka to samna ga to kha documentation pu ga so shin go shin yang ata dianu ga so category mi ka to fal che chain ya kong eligible ga so sumi ga to chain do nisko le sa sim che ju kas
0: ta ata PMGP na ata government employee na kho as kang yin chi government employee retire na kho as kang yin chi ma army retire na kho as kang yin chi eligible lot
1: kas
0: baki women do su na ata सांबार कांग ने चिन इना इनकम कैप क्या हो यों चे मन ये ना कि इधर में मां लियों से वन इसका में या बीपीएल उसे चाऊ में क्या इनकम ये ना चाऊ में ना चाऊ जो चीज है सिर्फ गोशन का था अगर ये ना दा मिनिमम 5 लाख सापे गोशन समना मिनिमम ये ना क्वालिफिकेशन 8 पास गोशन 8 पास इन संग काम हो ना 5 लाख संग काम मने लोन थोक चा मने सो बाकी 8 पास संग एबव ना ये ना मैक्सिमम चाम गोशन समना मैक्सिमम कैप इन होगा मैन्युफैक्चरिंग ना 50 लाख सर्विसेज ना 20 लाख दे एलिजिबल छ छन ता गता डॉक्यूमेंटेशन बो ची गोशन देना गुमा गेरा आधार कार्ड गोशन ते सिने गेरा गोशन गता कैटेगरी यूज इन सो बाय एसटी से रिसीव गोशन ते सिने अगर गेरा यूनिट को रूरल एरिया ना ताना रूरल एरिया सर्टिफिकेट से ते नंबर दारी गंडी से गोशन सो ए वीडियो का नीति से गोशन ते सिने गेरा गोशन सेल्फ डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन गता सर्टिफिकेट गोशन गाव गेरा नंबर दारी रिसीव दान थिन कि गेरा का युल ने ना ई युल पा इन जते सोंगे ना दे युल ला दुग ने जते ते ओशन तेना चोसला तेने प्रोजेक्ट रिपोर्ट ची बा ओशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट पंगे ना सामसी प्रोजेक्ट के ते डिटेल बंगे ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना चोसे सीएच ओसे तांचे लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट संगाल ना गेना ऑफिस ला अप्रोच से मजा गेना कोटेशन बस्तन छ मशीनरी मशीनरी चाम जी छ दे दे मजा अस्ता ना तेने गाजी तेना हिसाब से गेना जानो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट ना सम संभव ओशन ते मंगेरा ना गाल ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर बात सीखो ना ते ना अगर गलत वाला चना गिरा यंग को नहीं चेंज बाउश ते पिंगे ना अगर इक्कस को ते ने इंग आता एफिडेविट चुको शंदे एफिडेविट ना लिस्ट क्या गिरा गाल ना पीएमजी पिन नहीं ते यंग हो सको फर्स्ट टाइम यूनिट गाल एक्जिस्टिंग यूनिट चीज होना तो एलिजिबल सचिन मन गिरा यूनिट गुमा सेटअप बना मशीन डिसोमा क्यों ना दे एलिजिबल सचिन न्यंपो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे शेमन तेने चिंगाता एफिडेविट ना दिस होंगे चिंगेरा बाकी चिंगाता ची प्रोविजन गाता योजना ते संग फॉलो विद गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट होना जीते है तेना संग योजना दिखते न्यंपु गेरा फोटोग्राफ गाता पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नीच छाना दिखते नहीं बस यो संभव गाता देने ही का नंगा जी पूरा प्रोसेस जो से गेरा बैंक बो गेरा चॉइस बगेन छे गेरा यूनिट को कार्य योजना मगर यूनिट है दून ना योंगो छे बैंक सो गेरा मान लो गेरा रूरल एरिया जी ना बैंक ना मान लो गाता टीएसजी योजना बैंक बो तेने टीएसजी को बायो ना छे ने गेरा यहां कारगिल खोना ना छि पे बैंक बो का गेरा दून ला यो ते नास का गो छे ते सिने गेरा डिग ना बगा तातियो छ जे नंगेरा एसबीआई नस्कान छ एसबीआई गेरा निधि जगह का बैंक योत में ना ते गेरा बाकी बैंक उसका गेन छ मगर बैंक अवेलेबल योत ना तेरा काउंसिस बस बाकी अजी का नहीं गेरा पूरा काउंसिस ने अजी का ने सैंक्शन लेटर दी तो छ ते को ते गेरा बैंक अच्छा छ तेने बैंक ने प्रोसेस बस मेन बोलो गेरा साइन बोर्ड की यूनिट देता हो छ जे मेन बो देना ने
1: कसा जो छना दी लोन पुखरान चोसने गाता चाम से ड्यूरेशन अंडर दी लोन पुलदान चाहिए या गाता स्पेरा का चिंगाता

0: Tere konesh kan se tan se ni ya pura formum chi sa ma.
1: Kus.
0: Pura sanction chus te kona nes beng ne sanction beng a sape kona lip ka chen. Testing ne ngena bas ngiri unit pushul chas ngena fayda na jese ngata har jaga ngata ozuk chen ngata. Ngata.
1: Kus.
0: So mela chus. Ngata tena ngena one part ne nyan chen. So ngena pong ngena pong ngata eno dasa kargila audio pi product apricot yun.
1: Kan chana diang spera chik do tipa ju industry si taraf na ngata workshop bet jaga jaga. Chana other workshop yanu ngata outcome chigenta ek detail chigenta lipcha du tu di workshop under something ngata sell songa department under ya NRLM pi naga stall chikta sur na des stall pi kana chom sell songa chas yenta detail chita su du tu chana ade sab chikai yana chore ta ki ngata yentes tangane ode stall ni ka yentes tangane ode workshop ni ngata formal na yamata food processing las bakan la faidi tu thop tu sur chao
0: फायदा फिलहाल जनाता एग्जाम जी थोप गोशन गाता पोटेंशियल एग्जाम से एग्जाम जी माचा नो मगर यों से चाना पोटेंशियल बो गाता ची बे मी ने फर्स्ट पोनो लेक ऑफ अवेयरनेस गाता दिया गा जी प्रोग्राम जी बस पिन ते ना गा जा खों संगमा एग्जाम ची गाता एंटरप्रेन्योर्स जैसे फूड प्रोडक्ट ना ची ना खोला गा जी ऑनलाइन ई कॉमर्स से कंगा जी खों नोज ऑन बोर्डिंग बचेस
1: कैसे
0: देना गा जा मी मा मा पो यों मगर ऑन बोर्डिंग बस ने ते ने गा रिस्पांस मा गैलिंग मा पांच छह नफर जी ऑन बोर्डिंग बस से ऑन बोर्डिंग बना ये चल देमो हर ऑल ऑल ऑल ओवर इंडिया ने गा डिमांड होत छ सी बेंगे ना ई कॉमर्स मीशो दो आता ते पोटो का सो ई कॉमर्स जुग ना ते समय का गा यदि प्रोडक्ट को छों ना मी समय ये ना डिमांड गेल ना ने ते पे मेन बनो ये जा ने अवेयरनेस होत छ Nyampung aja awareness program di tang na, tiap follow up batches ni je.
1: Sih
0: nyam tiap macam tu, sampai nyam tiap kerja research batches, tiap tiap macam ni na, yang na follow up.
2: Kesini program yang kanun, daksa supaya intes lobzang lontok ikana interview kena benciut pin. Gawenung ane aranga loksu scheme ni sekolah ngatas peratus kanin. Artiang mabed di program pun ngati program ngin kani achen muka ka phone oni fila argyal bek chok yang duni kana fan kelen mi fraluk sbo kasani tus pusan chang ejaza chita mo menduk dyan yin bo di ding si program pu thamathon nga Sayyid Kazim Husseini ejaza chas debos yaju khudana sahmoni fakhren

मीडियम वेव दोन एफ एम एक जीव आकाशवाणी करगिलिन वास्पतु स्वतर दोन संस्कृत कसता अच्छी नमोनी फिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट गन मजद प्रोग्राम प्रोजेक्ट गन पैन अर्चो नरगेश

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun local in ya fayuli thokikain akashwani stanchain customer un sapille piece cups mangmu darine antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242।
3: सुनो ना।
1: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

एम ए वाई यू दोम के तहत 2120 मकानात भी शामिल हैं। उनमें से अब तक 35,961 मकानात मुकम्मल किए जा चुके हैं। दरी असना पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान समरसता यात्रा और सन संपर्क अभियान के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम लगाया कि वो हकीर मकासिद के लिए मनफी सियासत से काम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों लीडर बार बार पैलेट मुतासरीन की बात कर रहे हैं, जबकि बकौल अल्ताफ ठाकुर वो दोनों अपने दौरे इकदार में पेश आए वाकयात पर खामोश हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हर खत्ते की शमूलियाती और मसावी तरक्की को यकीनी बनाने के हुकूमत के अजम को दोहराया ताकि तरक्याती अमल को दवाम बख्शने के साथ साथ लोगों को आला मयार की सहूलियात दस्तियाब हो सके। इन बातों का इजहार उन्होंने आज सिविल सेक्रेटरी श्रीनगर में कई कानून साजे के साथ मुलाकात के दौरान किया। इन अरकान ने अपने अपने हल्कों के मसाइल और तरक्याती जरूरियात को उजागर किया। वजीर आला ने अरकान को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए मामलात को तरजीह बुनियाद पर हल किया जाएगा। पुलिस ने शोपियां में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज काठो हालन के नजीर अहमद लोन नामी ड्रग स्मगलर के रिहायशी मकान को अटैच कर दिया है। इस मकान की कीमत 18,76,000 रुपए बताई जाती है। पुलिस ने हंदवारा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गंड छबूतरा में नए फौजदारी कवानीन से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें काफी तादाद में पुलिस अफसर असातिजा और तलबा ने शिरकत की। कुलगाम से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि फांसी हमले ने आज तांत्रेपोरा सरसनो इलाके में बागाती इलाके से एक मुश्तरका तलाशी कार्रवाई के दौरान काफी मकदार में असलहा और गोली बारूद बरामद किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से कैटेगरी 1 का दर्जा हासिल हुआ है। इस अहम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि कैटेगरी 1 का दर्जा हासिल करना पूरी यूनिवर्सिटी के लिए बायस इफ्तिखार है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में तहकीक इख्तियारियत और तालीमी सरगर्मियों को मजीद बढ़ावा दिया जाएगा। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत रीजनल पासपोर्ट ऑफिस श्रीनगर की मोबाइल पासपोर्ट वैन 31 जुलाई तक टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बेमाथांग करगिल में मौजूद रहेगी। ख्वाहिशमंद अफराद पासपोर्ट खदमात हासिल करने के लिए मोबाइल पासपोर्ट वैन टीम के साथ राबिता कर सकते हैं। हुकूमत ने यारवन शादी मरग पुलवामा में खू साहब चश्मे को तरक्की देने के लिए 6,30,00,000 रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वजीर आला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट की बदौलत इस अहम मकाम पर बुनियादी ढांचे को तकवियत मिलने के साथ साथ इसकी शान रफ्तार बहाल करने में भी मदद मिलेगी। वाजह है कि हुकूमत ने हाल ही में शोपियां की तारीखी जामा मस्जिद और रामबन में सरोधर चामुंडा माता मंदिर की बहाली के लिए 16,36,00,000 रुपए के प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी थी। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तसादी जरायम से मुतालिक विंग ने एक तवील अरसे से जेर समात भर्ती से मुतालिक धोखाधड़ी के एक मामले में मुलजिम को सजा दिलवाने में कामयाबी हासिल की है। 13वें फाइनेंस कमीशन की एक खसूसी अदालत ने बड़गाम के रहने वाले नजीर अहमद मलिक नामी एक शख्स को कसूरवार करार देते हुए सजा सुनाई है। मजकूरा शख्स पर जाली तालीमी असनाद का इस्तेमाल करके इंडियन रिजर्व पुलिस में धोखाधड़ी से कांस्टेबल की नौकरी हासिल करने का इल्जाम है। जम्मू कश्मीर में 8,181 सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल नस्ब किए गए हैं, जिनमें से 85 मेगावाट की तवानाई पैदा हो रही है। इस तरह जम्मू कश्मीर मुल्क की 31 रियासतों और यूटीज में इस प्रोग्राम की अमलावरी में तीसरे नंबर पर है। इस बात की जानकारी श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान साइंस व टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा को दी गई। कश्मीरी सोफी गुलकार फोरम और अहद जरगर मेमोरियल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से कल टैगोर हॉल श्रीनगर में बयाद न्याम साहब महफिल मौसीकी का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें वादी के नामवर सोफी गुलकार न्याम साहब का कलाम पेश करेंगे। उधर सागर कल्चरल फोरम चुकुरपट्टन ने आज बाबा ऋषि टंगमर्ग में दो रोजा अदबी कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। अब मुख्तलिफ जिलों की कुछ मुख्तसर खबरें। एमएलए देवसर पीरजादा फेरोज अहमद ने आज डीसी कुलगाम शहजाद आलम के हमरा दरगुंड बंगडार और दीगर इलाकों का दौरा करके वहां कल बादल फटने से पैदाशुदा सूरतहाल का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतासरीन में रिलीफ भी तकसीम की। डीसी बड़गाम अतर आमिर खान ने एक मीटिंग के दौरान जिला में अमलाई जा रही पीएम सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने मुतलिका अफसरों को हिदायत दी कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्कीम के दायरे में लाएं। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है।

0: پلیٹفارم ہے جہاں نوجوانوں کے خواب حقیقت کا روپ دھارتے ہیں اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملتا ہے۔ اگر حکومت، تعلیمی ادارے، نجی شعبہ اور سماج مل کر نوجوانوں کی رہنمائی، تربیت اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری رکھیں تو نہ صرف بے روزگاری میں نمایاں کمی آئے گی بلکہ جموں کشمیر۔
1: یہ آکاش وانی ہے۔ اب آپ جاگرتی شرما سے سنسد میں آج ہوئی کاریواہی کی سمیکشا سنیے۔ پہلے لوک سبھا، لیکھک ہیں پی ٹی آئی بھاشا کے دیپک رنجن۔ لوک سبھا نے آج لوک پریکشا انوچت سادھن نوارن سنشودھن ودھیک 2026 کو منظوری دے دی۔ نیٹ پرشن پتر لیک کی پرشٹھ بھومی میں لوک پریکشا انوچت سادھن نوارن ادھینیم 2024 میں سخت پراودھان شامل کرنے کے لیے لائے گئے اس سنشودھن ودھیک پر ہوئی چرچا کے دوران نیتا پرتیپکش راہل گاندھی کی کچھ ٹپڑیوں کو لے کر ستا پکش اور وپکش کے بیچ تیکھی نوک جھوک ہوئی۔ اس کارن سدن کی کاریواہی پہلے ایک بار قریب 40 منٹ کے لیے اپراہن 2:30 بجے تک اور پھر 3 بجے تک استھگت کر دی گئی۔ ہنگامے کے بیچ ہی پردھان منتری کاریالے میں راجیہ منتری جتیندر سنگھ نے ودھیک پر ہوئی چرچا کا جواب دیا اور ان کے جواب کے بعد سدن نے دھونی مت سے ودھیک کو منظوری پردان کر دی۔ ودھیک پارت ہونے کے بعد کانگریس سانسدوں کی نعرے بازی کے بیچ ہی ادھیکش اوم برلا نے کاریواہی دن بھر کے لیے استھگت کر دی۔ چرچا کا جواب دیتے ہوئے جتیندر سنگھ نے کہا کہ نیٹ پرشن پتر لیک کے معاملے میں سرکار نے فوراً کارروائی کی اور 12 جولائی کو جانچ سی بی آئی کو سونپ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کل اس کا معاملے میں آروپ پتر دائر کر دیا گیا ہے اور آج سے سنوائی شروع ہو گئی ہے۔ श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मो सितम ढाया गया जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होंगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य, जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए।

उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा, हिंसा और नफरत नहीं थी, बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्तापक्ष के टोकाटोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट डीएम, उपमंडल मजिस्ट्रेट एसडीएम अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे

0: सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधवराव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेवराव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधू ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्तापक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा समाप्त कर रहे थे। मीडियम और एफएम पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़।

फौजी भाई जय हिंद। फिल्मी नगमो पर मबनी आपका मनपसंद प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए लेकर फिर एक बार आपका दोस्त मोहम्मद हुसैन फयाज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। दोस्तों, जब मौसम आशिकाना हो तो आशिक को तारे जमीन पर उतरे हुए नजर आते हैं। ये खामोश नजारे, ये चंचल हवाएं, ये महकती हुई फूलों की खुशबू दिल के तारों को छू लेती है।

दोस्तों, सोए हुए जज्बात जब जागने लगते हैं तो मचल उठती हैं उमंगें। पहली तलाश तो अपने की है, अपना जो मिल गया तो तलाश शुरू होती है आशियाने की। झूठ कहते हैं लोग, न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। लेकिन हकीकत है फौजी भाइयों कि अपनों के साथ एक आशिया का सहारा किसको नहीं चाहिए। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना है घर तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर।

दोस्तों, ये फिल्म नक में आप ऑल इंडिया रेडियो कारगिल से सुन रहे हैं फौजी बाहिनी के लिए प्रोग्राम मेरे पसंद में। दिन हफ्ते हफ्ते महीने बनकर बीत जाते हैं, इंतजार बाकी रहता है। इतना इंतजार की आंखें पथरा जाती हैं तो दिल में फूक सी उठती है, चाहतों का सैलाब उमड़ता है, तब उम्मीदों और आशाओं के

प्यार एक ताकत, एक एनर्जी होती है। चाहत में ताकत है, चाहतों से कद्र कीमत बढ़ जाती है। दिल में किसी के प्यार का दिया अगर जलता है तो फिर भला दुनिया के आंधियों से ये कैसे बुझ सकता है।

शिकवा है तो नसीब उसे तुमसे गिला नहीं, शिकवा है तो नसीब उसे तुमसे गिला नहीं, किस्मत है बेवफा मेरी तुम बेवफा नहीं। मरीज इश्क गुलिस्तान में सूखी हुई पत्ते की तरह ताकत और हालत के रहम करम पर है। हर फूल खरदार है, हर मुस्कुराहट के पर्दे में आंसू मचलते हैं। यहाँ किसी की हालत किसी से छुपी नहीं है, सब जानते हैं कि कौन किस पर मर मिटा है। मगर आदत है मोहब्बत की मेरे जबान होती है, शिकायत है तो मुकद्दर से, काश मोहब्बत का सहारा मिल गया होता।

अभी आप फिल्मी नगमों पर बन प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर आकाशवाणी करगिल की आवाज़ से सामीन शब के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, याद रखें समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध

0: शिक्षित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
1: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशंस थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
0: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
4: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठीचार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के कस्टेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप।

0: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जन भागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
1: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है, जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच IMD ने नुआपड़ा, कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले 2 दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से 2 दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 1 मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज

0: बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपए पर बंद हुआ।
0: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसुमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपराध अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 요시 헤이.
1: 야 영시 헤이. 정말 영시 헤이.
0: 내용 헤이.
2: 쭉쭉 보세. 영차요. 얘나 유언나.

0: Ya, Kolea, dar en argaspan, şesenduk. Ya don şikle, nonuhun, don şiang bu. Wa, wa kaçık bin rozduk se, donuz ote ana yok matonduk, otil bakan katon.
1: वाका चंग अर्जित का तुम अर्जित अली
2: चंग मार्जे पले डूल छिगम
3: ले सकुर सुगा सार्जित पदी समेत पिजन लना चिजिम
2: छा नंगास खुर्स जेत पाया मेटूत खुर्स सुगा दूर जेत पथे वा मेटूत नर जेत नडी अपाजी लगा चमक गोचा यां दो में मा खाप स्कुतपा चीर गोसखान पुखुरे ओ मा दपाजीस मैं नारे कना चारदो क्यों से देंगे इसका ठोक ठोक चिबस पा मैं लब बार या
1: कोना चाव दो मैं नारी अपवाजी मिखरा भी मिशेल पोयां ची अपने
0: वाह पाचे ओलम सोरा किरान देखून चीजरें मीर गास पना मिखा ठोक चा ओना मीर गास खल्ला ठठा बसा या
3: दोना देना
2: यार डूल सी गया स्पेरा माना मामे एक तंगे
0: ओना दोस्तिक बोल नतं निमा शर्शर ला लावे का हेप ना मिल गया ला गॉस पर एक छाना
3: खोना लेवेत पा पुहाजी लगवे का ना आतंग सकबस ना आतंग आदि नाम पुम में खोर पागोस पाया
0: इन्शाल्लाह वानो नो ना मिखोर मिखोर तो समा लागोला देरी का नम थां सेवतना यक्मा सुन नम थांचन जर्सन बू
3: ओना ओना
0: या दे रीका स्प्रिंग कोरे स्प्रिंग